0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाबित लागू हैं
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
6: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
7: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जड़ना पहिरियों कदम वधायो अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

जी सिंह जा प्रोग्राम रोशन सबवा बुद पया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता जेमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर मटियारी मातली ए सकरण स्टेशन ता ए मावा जो साथी अवां जो आर जे अवां जी मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो सिंह जा गाल कंदा से पुराणे यादगिरीन जी चवंदा आहिनि त अॼु खां पुराणो वक़्तु तमामु बहितरु हुयो उहो छो बहितरु हुयो कीअं हो त पाण जॾहिं जोगिन जीअं रोलाक हुयासीं केतिरो विशाल में हुसनाक हुई पर हाणे प्यार जूं मिड़ई मुंदूं तूं वेबसाइट ते विञाए छॾियूं आहिनि ऐं पंहिंजे इश्क जूं शर्मीलियूं धुनूं जेकी तोखे सुरंदे खे ॿुधाइणियूं हुयूं से तूं इंटरनेट जे बेहिसाब ऐं बेहिजाब प्यानो ते ॻाए छॾियूं ऐं ॿुधाए छॾियूं कंप्यूटर जे बेअंत सागर जे पाताल में लहंदे लहंदे तोखे चांडरोकियुनि जी दरिया में तरणु मुखड़ीअ जी महक खे मारणु पोपटनि खे पाबूअ मां ॾिसणु ऐं खुली हवा में साह खणणु विसरी वियो आहे। बहरहाल चवण जो मतिलबु इहो त दौर सां गॾु सभु कुझु आहिस्ते आहिस्ते बदिलिजी वियो आहे। ज़माने सां गॾु ज़माने जा तौर तरीक़ा घुर्जूं तक़ाज़ाऊं ऐं मयार जा मापा बि साॻिया न आहिनि रहिया। ज़मानो अलाए छो शॉर्टकट ऐं रीमिक्स जे रंगनि जो दीवानो बणिजी वियो आहे ऐं सिंह जा अहसासनि जे अखियुनि नाॾो उहा हिकु अहिड़ी अलमनाक ऐं भयानक हक़ीक़त आहे जंहिंखे असां जहिड़ा कंहिं न कम जा चरिया माण्हू ऐं अज़ीम अलमियूं चवनि था। हाणे इंतज़ारे में बेक़रारी आहे छो बेक़रारी आहे त इंसान खे पुराणियूं यादगिरियूं अचनि थियूं ऐं अॼोको सिस्टम जीअं बि आहे इंटरनेट जो आहे गूगल जो आहे बहरहाल पुराणो वक़्तु पुराणो उहे यादगिरियूं आहिनि उहे माण्हू संभाले रखे त ज़रूरु कमु ईंदियूं।

Dicemos ya, Juan, que जी समीन प्रोग्राम रोशन में अवे इंतजार होंद ओसियड होंद सवाल जो असो जो अज सवाल है तमाम आसान है असा जे बाहर खास कर बहराड़ी में रहन था उनका इो पुछंदे तवे इलाके में कड़ा फसल इन वक्त लही चुका है कड़ा फसल अवं वट तैयार बीठा है या उ कुछ टाइम में फसल तैयार थी वा तो ई ना त हर एक इलाके में फसल पंहिंजो पंहिंजो आहे तव्हां ॾिसो त असांजो पंहिंजो जेको सखर डिवीज़न आहे ख़ासि करे पंहिंजो लाड़काणो डिवीज़न जेका आहे उन में कश्मोर ज़िलो आहे जेकबा ज़िलो आहे शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर डिस्ट्रिक्ट आहे उन जा फसल हिकिड़ा पंहिंजा पंहिंजा आहिनि ऐं जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त पंहिंजो सखर डिवीज़न में घोटकी ज़िलो आहे ऐं सखर ज़िलो आहे खैरपुर ज़िलो आहे त उन जा इलाइक़े में पंहिंजा पंहिंजा फसल आहिनि ख़ासि करे जेको दरिया जो पंहिंजो परियों पासो आहे लाड़काणे खां उन जा फसल पंहिंजा आहिनि जंहिंमें कंडियारो अची थो वञे नौशरो फेरोज़ मोरो अची थो वञे सकरण अची थो वञे वेंदे हाला हैदराबाद ताईं उते फसल पंहिंजा पंहिंजा आहिनि ऐं दादू ज़िलो जेकॾहिं सेवण पंहिंजो जामशोरो ज़िलो ॾिसूं त असांजो काशे जो इलाइक़ो आहे जेकॾहिं कंबर खां परियां ॾिसंदासीं बलोचिस्तान जो इलाइक़ो लॻे थो कंबर ज़िले खां दादू ज़िले खां जामशोर ज़िले खां त इहो जाबलू इलाइक़ो आहे जाबलू खां नए बि वहंदी आहे त उते बरसाति वारो सिलसिलो हूंदो आहे जिते बरसाति वारो सिलसिलो हूंदो आहे उते फसल हिकिड़ा अलॻि हूंदा आहिनि मुनफ़रद हूंदा आहिनि जीअं असांजो थर जो इलाइक़ो आहे मिठी मीरपुर ख़ासि जो इलाइक़ो आहे त उते बि वठे थी आहे याने मींहं वसण खां बाद में कुझु अहिड़ा फसल कुदरती तयारु थींदा आहिनि कुझु फसल वरी पोखिया वेंदा आहिनि असांखे मिठी वारा ज़रूरु ॿुधाईंदा मातली वारा ज़रूरु ॿुधाईंदा मीरपुर ख़ासि वारा ज़रूरु ॿुधाईंदा त असांजे इलाइक़े में कहिड़ा फसल तयारु आहिनि कहिड़ा फसल जेको आहे सो लही चुका आहिनि ऐं असां अहिड़े हिसाब सां पंहिंजो हैदराबाद आहे ऐं असांजो जेके बि इलाइक़ा आहिनि असांखे तव्हां ज़रूरु ॿुधाईंदव पंहिंजो इनबॉक्स में मैसेज इनबॉक्स में मैसेज करिणो आहे तमामु आसान तरीक़ो आहे तव्हां जेको आहे सो इनबॉक्स में ईंदव ऐं राइट ऑप्शन में अची करे तव्हां एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव ऐं तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जो नालो लिखी करे तव्हां असां सेंड कंदव 888 ते जेके दोस्त असांजो फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया असां उनखे गुज़ारिश कंदासीं त असांजी फेसबुक जी आई डी आहे GFM88 असांजी आई डी आहे असांजो पेज आहे फेसबुक जो तव्हां उन ते बि पंहिंजे पंहिंजो सवाल जेको असां कयो आहे पर सवाल न आहे असां अवां खां मालूमात वठणु पिया चाहियूं त कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में कहिड़ा कहिड़ा फसल आहिनि तव्हां असांजे फेसबुक ते बि मोकिले सघो था तव्हां असांखे लाइव कॉल जे ज़रिए बि असांखे ॿुधाए सघो था ऐं इन में का बि जेको आहे सो को धोको न आहे पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में जेकॾहिं हिकिड़ा शहर में माण्हू रहनि था त उन जूं ज़मीनूं उन जूं ॿनियूं उन जा फसल बहराड़े में पंहिंजे पंहिंजे ॻोठनि में ज़रूरु आहिनि त असांजा जेके ज़मीनदार भाइर आहिनि उनखे बि पंहिंजी फसल जी तमामु सुठी ॼाण हूंदी आहे ऐं ख़ासि करे जेको असांजो आबादगार आहे हारी आहे कुड़मी आहे उहो त असांजे ज़मीननि जो फसल जो डॉक्टर आहे ऐं उनखे वधीक ॼाण हूंदी आहे त असांजे इलाइक़े में हिन मौसम में हिन सीज़न में कहिड़ो फसल थिए थो अवां असांखे लाइव कॉल ते ॿुधाए सघो था असांजो नंबर आहे 0333221322888

0: Program Roshan Sahabyatan.
1: It's Republic of Iran. Here's the infinite carnage and occur. First arena have been to have negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. And again, I urged Iran to make a deal and they refused. Then you have a drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
2: ईरान खे तबाह करणो आहे या उनखे ॿीहर साह खणण वॾे फ़ैसिले जो ऐलान करणु मुदे वारनि चूंडुनि बाद ईरान सां मुआदो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो गयल क़ौम जे जनरल असेंबली जे ख़िताब डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान विचो भर में बदमाश बणियल हो, हाणे बदमाशी करे न सघंदो। ईरान सां मुआदो करणु चाहियो पर तेहरान इनकार कयो। उमेद आहे विच में ट्रंप चूंडुनि बाद ईरान सां मुआदो थी वेंदो। हाणे ज़हन में सिर्फ़ आन का बि सूरत में टिमी सघे। ईरान जे दहशतगर्द रेजिम ख़राब वर्ताव जो मुज़ाहिरो करे रही आहे। ख़राब वर्ताव ईरान जी ताक़तवर हुजण जी अलामत न पर कमज़ोर हुजण जी निशानी आहे। सैकड़ो वाद थी वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जे गॾियल क़ौमुनि जे जनकासी इजलास में शिरकत। इफ़्ताही सेशन दौरान आलमी अॻवाननि सां गैर रस्मी मुलाक़ातूं। वज़ीर आज़म कुवैत जे वली अहद शेख सबाउल ख़ालिद अल हमद सबा विच में मुलाक़ात दौरान बतरफ़ लाॻापन। मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार खे हथी ॾियण लाइ केनिया जे सदर सां मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापन रुख में शरीफ़ सोमर हसन शेख महमूद केनिया जे सदर ऐं ऑस्ट्रिया जे फेडरल चांसलर क्रिस्टन स्टाकर सां बि धार धार गैर रस्मी मुलाक़ातूं कयूं। इलाइक़ाई आलमी मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि।
3: आप सुन रहे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 2.5 साल है तही बनायो हाचे तालीमी शोब है ते बुनियाद दियो सिंध जे कहीं भी शहर या जिले जे तमा आवटी सगो था असा वट मौजूद आहन एयर कंडीशन क्लासरूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐ सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक्त करे अजी रात 04284 ऑफिस टाइम सुबह 9 खां शाम 5 वगे ताई एड्रेस हसीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे सामू वापडा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो
5: ارشاد مہراپور اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد سکر رونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے جا تماں ایت تے موجود ارشاد آٹو استے پینٹی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو کمپیوٹرائز جے جے میں ملے تھی کار کنٹرول آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین تھی ارشاد مہراپور لائے 018003
6: ہر بار جا ننڑا کی نئی دنیا دا ودھن تا पर पोलियो इन्हनि खे बि सघे पोलियो कतरा ज़रूर पियारियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
7: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो

0: अपने रोड में रहो 30136।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया मोटरसाइकिल सर्विस कते मौजूद जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जरिए देखी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी जरिए कई वन्य थी हॉफाइड टेक्निकानी एड्रेस इंडस बाईपास नस्त राप्ती जिलाई आसिम हुसैन 0307352।
1: खुवल गैर जरूरी बालों को खत्म धल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
3: ये सवाल भी नोट करे भाई जी जज्बे जी जो सम प्यार कयो आहे चाहे शायर फिलासफर तन सभिनी जा जेकॾहिं शुरूआती प्रेम कठा करे पढ़िया वञनि त उन्हनि मां हिकु ई हक़ीक़त चमकनि प्रेमियुनि जी शुरू ऐं ख़्यालनि जी हिकु जहिड़ाई हर कंहिंजी बयानी तिर्ज़ पंहिंजी हूंदी हर ॿोली फल हूंदो जेका आहे रिट आहे सभिनी जी निंड कान्हे जीअं मां तोखां सवाइ जी नथो सघां प्यार जो जज़्बो धरतीअ जे हिकु छेड़े खां ॿिए लफ़्ज़ साॻिया साॻिया हूंदा आहिनि पर जेकॾहिं का दवाउनि जी कंपनी हिकिड़ी हूंदी आहे त हुन में नाबराल हूंदो आहे जेको समुंड वांगुरु हूंदो आहे।

जी हा सिमी जा प्रोग्राम रोशन सुबे सां अॼु सवाल नओं आहे त अव्हां जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल हिन वक़्तु तयारु आहिनि या जेको आहे सो लही चुका आहिनि। असां अहिड़नि दोस्तनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं जेके असांजे काशे जे इलाइक़े में आहिनि, यानी जाबलू इलाइक़े में आहिनि। असां हुनखे बि गुज़ारिश कंदासीं त असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं कॉल करे मैसेज करे असांखे ज़रूरु नोट करायो त अव्हां जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल आहिनि जेके बरसाति ते थींदा आहिनि, या जेकॾहिं का पाणी जी सहूलियत अव्हां ताईं आहे त अव्हां हिन वक़्तु कहिड़ा फ़सल असां अव्हां जे इलाइक़े में मौसम जे हवाले सां थियनि पिया, थर जे इलाइक़े में हिन वक़्तु कहिड़ा फ़सल तयारु आहिनि लही चुका आहिनि, ऐं पंहिंजो लाड़ आहे उत्तर आहे उत्तर जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल आहिनि, ऐं दरियाई यानी कचो जेको आहे कचे जे इलाइक़े में कहिड़ा फ़सल तयारु आहिनि, अव्हां असांखे ज़रूरु ॿुधायो। ऐं मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, तव्हां उते एल आर के लिखी तव्हां स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं पंहिंजे इलाइक़े जे फ़सल जो नालो तव्हां असां ताईं मोकिले सघो था 888-1 ते। जी एफ एम 88 जी आई डी आहे, फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि असां ॾे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु फ़सल जो इलाइक़े जो जेको फ़सल आहे तव्हां लिखी असां ॾे मोकिले सघो था ऐं असां ॾे कॉल करे बि मालूमात ॾेई सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा बि कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इन्हन जे ख्वाबन के उॾाम ॾियन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
2: महिरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो महिरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-324-372-0242-460100।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची कयूं ऐं तव्हां खां असांजो सवाल इहो आहे त अव्हांजे इलाइक़े में कहिड़ा फसल बीठा आहिनि तयारु आहिनि या जेके आहिनि लही चुका आहिनि। हर हिकु इलाइक़े जो पंहिंजो पंहिंजो फसल आहे। जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त असांजे सिंध जे इलाइक़े में बलोचिस्तान जो पासो यानि कंबर ज़िलो दादू ज़िलो वेंदे जाम शोर ताईं जेको जाबलू इलाइक़ो आहे उन जे वट में जेका पाणीअ जी बरसाति खां पोइ नए वहंदी आहे उन में बि काफ़ी अहिड़ा फसल थियनि था जेके असांखे दोस्त ॿुधाईंदा। छो त किथे किथे अहिड़ी का मालूमात पाण खे न बि हूंदी आहे पर इहा असां मालूमात तमामु पीरियूं प्यारनि दोस्तनि खां वठूं पिया त असांखे मालूमात ॾियनि त इन इलाइक़े में कहिड़ा फसल थियनि था। वरी जेको दरिया जो इलाइक़ो आहे ॿई कपरू आहिनि ॿई पासा आहिनि उनखे पाण कचो चवंदा आहियूं त हिन वक़्तु कचे जे इलाइक़े में पाणी बि आहे ऐं पाणीअ खां बाद में कहिड़ा फसल तयारु आहिनि ऐं कहिड़ा फसल पोखण जी तयारियूं कयूं पिया त उहो अव्हां दोस्त ॿुधाए सघो था। ऐं ख़ासि करे दरिया जो परियों पासो यानी असांजो घोटकी ज़िलो खैरपुर ज़िलो ऐं असांजो नौशरो फेरोज़ आहे असांजो नवाबशाह आहे ऐं असांजो मीरपुर ख़ासि आहे बदीन आहे ठटो आहे ऐं थर जो इलाइक़ो आहे हैदराबाद आहे त इन्हनि इलाइक़नि में कहिड़ा फसल तयारु आहिनि सांगड़ आहे त वरी जेकॾहिं असां पंहिंजो लाड़काणो डिवीज़न सखर डिवीज़न मीरपुर ख़ासि डिवीज़न ऐं असांजो नवाबशाह डिवीज़न त इन्हनि इलाइक़नि में असांजा कहिड़ा कहिड़ा फसल तयारु आहिनि अव्हां ॿुधाए सघो था। कुझु दोस्तनि मालूमात ॾिनी आहे ऐं असां अव्हांखे इहो ॿुधाईंदासीं त असांजो मोबाइल जेका स्टूडियो में आहे उनजो थोरो नेटवर्क सिस्टम थोरो बिज़ी आहे ख़राबु आहे यानी असांजो टेक्निकल ख़राबी आहे मोबाइल जी जंहिं जे करे अव्हां दोस्तनि जी जेका कॉल अचे पई उहा अटेंड नथी थी सघे उन करे असां अव्हां खां माज़त खां बि आहियूं ऐं अव्हां असांजे इनबॉक्स में बि मोकिले सघो था फेसबुक ते बि ते बि तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब मालूमात असां ॾे मोकिले सघो था। संजमा नौजवान शाइर आहे गुलाम मुर्तज़ा मीर उन जे ग़ज़ल जूं चंद सिटरूं अव्हां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। दास्तां मां बयां कयां कहिड़ो दास्तां मां बयां कयां कहिड़ो राज़ दिलि जो अञा कयां कहिड़ो था नवां इंक्शाप रोज़ थियनि सो नओं राज़ दां कयां कहिड़ो साण सूरनि जो काफ़िलो आहे हाणे मां कारवां कयां कहिड़ो मुंहिंजो हिकिड़ो जो तूं सनम आहीं ॿिए खे रोहे रवां कयां कहिड़ो प्रीत ऐं प्यार खे नाहे बका जीअ खे जावेदा कयां कहिड़ो रीअ उल्फत न काई लोड़ अथमि मीर कम जी कयां कहिड़ो।

जी समय ने कुछ दोस्तनि असांजा प्रोग्राम में तवन कयो याने कुझु मालूमात ॾिनी ऐं अव्हां दोस्तनि जा कुझु नाला बि ज़रूरु खणंदासीं। असां अव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलंदासीं त जेका हिन वक़्तु हीअ सीज़न आहे, जेका हीअ मौसम आहे, त असांजे ख़ासि करे सिंध जे इलाइक़े में कहिड़ा कहिड़ा फसल तयारु थियनि पिया या तयारु थी चुका आहिनि ऐं कुझु मार्केट में पहुची चुका आहिनि। त असां अव्हां ताईं कुझु मालूमात ॾींदासीं जेके असांखे दोस्तनि मालूमात ॾिनी आहे। त असां अव्हां सां इहा ॻाल्हि कंदासीं जेको असांजो काशे जो इलाइक़ो आहे, यानि जाबलू इलाइक़ो, ऐं हिन जे वट में जेको पाणी हूंदो आहे नए जो, ऐं ढंढूं तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि वेंदे कंबर डिस्ट्रिक्ट खां बलोचिस्तान खां वेंदे दादू ज़िलो ऐं जामशोर ज़िले ताईं, जेके असांजो जाबलू इलाइक़ो आहे, त उते फसल हिन वक़्तु या सियारे जे मौसम में त सब्ज़ियूं तक़रीबन सभु थींदियूं आहिनि, तमामु घणियूं थींदियूं आहिनि। पर हिन वक़्तु जेके असांजे इनखे बि असां फसल चई सघूं था त जेके ढंढूं आहिनि, तलाव आहिनि, खॾूं आहिनि, त उहे हिन में मच्छी तमामु घणी जेको आहे सो पंहिंजो मरंदी आहे ऐं मच्छीअ जेको कारोबार आहे तमामु घणो हूंदो आहे हिन इलाइक़े में, जेको पूरी सिंध ताईं पहुचाइनि था। ख़ासि करे लाड़काणो ज़िलो आहे, हुन में कश्मोर ज़िलो आहे ऐं कंबर ज़िलो, इन में तमामु मच्छीअ जा घणा जेके तलाव हूंदा आहिनि, ढंढूं हूंदियूं आहिनि, खॾूं हूंदियूं आहिनि, ऐं सियारे जे टाइम में वरी उते उन्हनि ढंढुनि में, इन्हनि खॾुनि में, उन इलाइक़नि में वरी परदेसी पखी बि ज़रूरु ईंदा आहिनि, जेके माण्हू शौक़ सां खाईंदा आहिनि। ऐं लाड़काणे ज़िले में जेको ॿुधायो वञे थो त सारियुनि जो फसलु पंहिंजो हिन वक़्तु बीठो आहे, कुझु अञा तयारु न थियो आहे पर तयारीअ में शुरू आहे, ऐं कुझु बिह जो फसल हूंदो आहे, जेके बिह सब्ज़ी तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि, खाधा वेंदा आहिनि। ऐं लाड़काणे डिवीज़न में मकई बि आहे ऐं उन जा जेको आहे सो काफ़ी जुअर बि थींदी आहे, काफ़ी अहिड़ा जेके फसल आहिनि तयारु थियनि पिया। ऐं कुझु जेको सखर डिवीज़न आहे जंहिंमें वाउण थियनि पिया, कमन थिए पियो, केला ख़ासि करे असांजो खैरपुर ज़िलो जेको आहे, ऐं जुअर थिए पई कचे जे इलाइक़े में, तिर थियनि पिया। ऐं असांजो थर जो जेको इलाइक़ो आहे, थरपारकर आहे असांजो थर आहे, जिते असांजा मारुणा रहनि पिया, सांगीअड़ा रहनि पिया, त उते वण जो पंहिंजो ग्वार जो फसल ऐं बाजरी आहे, मुङ आहिनि, तिर आहिनि, चिबड़ ऐं वरी बरसाति जे मौसम में खुंभी बि तयारु निकिरंदी आहे वारियास इलाइक़े में, जेका खाधी वेंदी आहे सब्ज़ी तौरु। ऐं कुनरी जेको इलाइक़ो आहे थरपारको जो, कुनरी मुंहिंजे ख़्याल में तमामु सुठो शहरु आहे, उते मिर्चनि जी आलमी मंडी लॻंदी आहे, पूरी दुनिया जी वॾे में वॾी मंडी थींदी आहे, जेके असां मिर्चनि जी आलमी मंडी चवंदा आहियूं, उहो कुनरी शहरु आहे। ऐं मिर्च उते पहुचंदा आहिनि ऐं मीरपुर ख़ासि जे इलाइक़े मां जेका असांखे दोस्तनि मालूमात ॾिनी आहे, उते चमाटे जो फसल, कमंद, मिर्च, बसर, मकई ऐं मटरी बि ॿुधाई वई आहे, त मटरी जो फसल बि उते पंहिंजो आहे। ऐं ठटो बदीन में जेको असांजो सारियुनि जो जेको फसल आहे उहो लही चुको आहे, ऐं असांजी पूरी सिंध में जेको सारियुनि जा नवां चांवर ऐं जेको चांवरनि जो अटो आहे उहो पूरी सिंध में पहुची चुको आहे। इहो असांजो सारियुनि जो फसल ठटे बदीन जे इलाइक़े में लही चुको आहे। ऐं असांजे ख़ासि करे दादू जेको ज़िलो आहे उन में चणनि जी पली जेका असां बोड़ तर खाईंदा आहियूं ऐं चणा बि तयारु थींदा आहिनि, त उहा फसल बि जेको आहे सो लही चुको आहे, मार्केट में पहुची चुको आहे। बाक़ी जेके सियारे जे मुंद जूं सब्ज़ियूं थींदियूं आहिनि उनजी तयारी थींदी, उनजी पोखाई थींदी, पर बहरहाल फ़िलहालु असां जेके बलोचिस्तान कोइटिया खां सब्ज़ियूं अचनि पियूं, ख़ासि करे जेका असां सियारे जो पोखींदा आहियूं ऐं पाण खाईंदा आहियूं, त उहे पहुची चुकियूं आहिनि मार्केट में, काफ़ी अहिड़ा फसल सब्ज़ी जा जेके आहिनि उहे पहुची चुका आहिनि। ऐं हाणे अव्हां दोस्तनि जा नाला जिन असांजो साथ ॾिनो आहे, असां हुनजा नाला खणंदासीं। अली हसन कनासरो, ॻोठु सिराई दुरमंद कनासरो, तालुको लाड़काणे खां, ॻोठु मसूहब खां डॉक्टर ज़मीर हुसैन मीराणी, साईं तारिक मीराणी ऐं फिदा हुसैन मीराणी, नौंदरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो, ऐं नूर कॉलोनी लाड़काणे खां बिलावल खोसो, ग़ुलाम अली खोसो ऐं सदा हुसैन खोसो, आसिफ अली चाचड़ माहौटा लाड़काणे खां, अरशद मीराणी पंहिंजो सखर खां, वासिफ अली भुगटी लाड़काणे खां, दिलीप कुमार पंहिंजो आहे दोस्त मेघवाड़ थरपारकर खां, तमामु सुठी मालूमात ॾिनी पंहिंजे थर जे हवाले सां, ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां तमामु सुठी मालूमात ॾिनी, भाउ रियाज़ जरवार ॻोठु सिंधड़ी मीरपुर ख़ासि खां, हुन बि सुठी मालूमात ॾिनी, भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं भाउ असांजो आहे ॻोठु सिराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां, फ़तेह मोहम्मद कनासरो, उन बि तमामु सुठी मालूमात ॾिनी पंहिंजे इलाइक़े जे फसल जे हवाले सां, उन सां गॾु आहिनि सैद अहमद शाह ऐं फराज़ अहमद कनासरो, फारूक अहमद ऐं बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो, ऐं ॻोठु कंगन खां नादर अली कंगो, गुलाब खान कुंभर, ग़ुलाम रसूल ऐं शोएब कुंभर,
अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां भाउ बि तमामु सुठी मालूमात ॾिनी फ़सलनि जे हवाले सां ऐं ॻोठु लाल मोहम्मद मरी खां तालिब हुसैन मरी बि कॉल कई भाउ जी वॾी महिरबानी नूर हुसैन तुनियो बदीन खां मोहम्मद खान कुंभार हाले पोटा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां ऐं नज़ीर खोसो सुबतपुर बलोचिस्तान खां बरकत जमाली बलोच जाफ़राबाद बलोचिस्तान बलोचिस्तान खां भाउ जी वॾी महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में तवन कयो ऐं असां सां गॾु हुया ऐं हिकिड़ो कलाम आहे ख़ूबसूरत गॾिजी पिया ॿुधूं

जी हा सुभान शमन अली मीर अली जी इन कलामत प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंची तो पंहिंजी पुॼाणती हयाती बि ख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्ला जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला और बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकडे तवां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे तही बेहतरीन मौक्यो हथन मां न वणायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सा लागापियल केतरीन ई नौकरीन लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाखिला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाखिला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों कदम वधायो
2: असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याना पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारो मसालो ढोरे सेहतमंद जी जान चारो मसालो जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क हम सब पर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को लाज़मी मतिल माज़ूरी
4: दारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा तो प्रोग्राम तालीमुल कुरान 5 मिनटन ते सिर्फ M88 नेटवर्क ते
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूब मिल्क रा टी क्रीम दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे और रन इस्तेमाल तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ एक्नी करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109
2: This program is brought to you by
6: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है

0: सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
1: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03202018003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो एं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: धार माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुदा पोलियो रंस दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چه هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوی او د هغې د خوبونو الوت وزری مومی. پولیو یعنی مستقله مازوری.
3: اپنا شهر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोज मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Aashiq Honda showroom Mehrapur Atlas Honda motorcycle shop per Atmat Aima Akhtar 3S dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur jithe nayi motorcycle ji sale company je mukarrar kel rate te dastiyab hai. Service center Atlas Honda Limited jo warranty claim center service area jithe Honda motorcycle ji behtareen service kai vendi hai. Honda company ja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood. Aashiq Honda Motors te pehje Honda motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese stitching machine je zariye je hame mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better. Fuel adjustment RPM ji adjustment computerized Japanese machine zariye kai vanye thi. Honda je qualified technician je zair nigrani. Aashiq Honda Motors address Indus bypass Nast Railway Line Mehrapur Rabte Jilai Asim Hussain Arai 0307-359210.
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ्ती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: लाड़पाड़े में हथियारबंदन की कार से फायरिंग पी पुटर समेत पंज जना कतल लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे कतल कयो मक्तूल जे वारसन जो चवण है असा जो पेंजी बिरादरी जे मानु सा पुरानो जमीनी तकरार है उन्होंने असा जे चार जणन के कतल कयो है इंसाफ कयो वने

0: न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बिल गेट्स से मुलाकात, पोलियो के खात्मे, माओ एंड बार जी सेहत समेत मुख्तलिफ शोबन में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मां पोलियो के मुकमल खात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के पोलियो खात्मे लाइ कोशिशन की वाखाण कई। भारत वलारियल कश्मीर में मजहबी सुञाणप के नुकसान रसायण की कोशिश कर रो है। नाले मादर छापन के आड़ में मासूम कश्मीर जो कतलेआम थी रो है। नायब वजीर आजम इसाक डार जो कश्मीर बाबत ओआईसी के राबता ग्रुप के इजलास के खिताब। इसाक डार वलारियल कश्मीर में साफिन ए नौजवान के निशानो बनाया पो वे। वलारियल कश्मीर में हुरियत अॻवाणनि समेत भी सियासी क्यादत नजरबंद है। विच ओभर में जंग के खात्मे की उम्मीद। गडियल कौम के जनरल असेंबली इजलास दौरान ईरान ए अमेरिकी वफदन के विच में टे कलाक डिघी मुलाकात। ईरान नाफ़े हर्मुज़ खोलने लाइ टे शर्त रखी छिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखी के अमेरिकी खसूसी नुमाइंदे से मुलाकात की है। मुलाकात सुठी रही, जल्द ही ईरानी से एक बी मुलाकात तय है। ईरान के सामू बदग हैं जिन में एक इंतही की दरख्वास्त वफदन में मुलाकात थी। अब्बास राखी अपना हर्मुज़ खोलण बाबत शर्त अमेरिकी नुमाइंदो आडो रखी छिया। ईरानी शर्तन में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म कर बहाल कर समूरन मुआजन से ईरान खिलाफ जंग जो खात्मो शामिल आन। पाक फौज कुरम सेक्टर में फितना खारिजन मुल्क में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बनाए छी। अफगान तालिबान पोस्टू छे फरार थी वया। सिक्योरिटी जरियन मौजूद नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकिन से फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सिस की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के वजन से मजबूर किया। पाकिस्तान सऊदी अरब से खुदमुख्तियारी सलामती मुकदस हंधन के तहफुज लाए गड है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कौमी डी के मौके से हुसैन के मके से हमले की मजम्मत क्यों था। हुरमैन शरीफ की सलामती के को भी खतरो समूरी दुनिया के मुसलमान के जज्बन के छियो रसाए तो। मंजूराबाद में गोठ जिमी वींदड़ कराची का दादू तरफ दींदड़ तेज रफ्तार वेन कल्टी औरत नायला फौत अठ जणा जख्मी। घोड़ाबारी में कुकड़िन सा भरल तेज रफ्तार मजदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: आलम में मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमान द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जक चुहम द गसास की द माशुमान द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-3105-109-0300-3105-109।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-335-69।
5: अदा
6: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न? अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।
10: जल रहा हूँ तेरी दूरियों में दूर कहीं, तेरे दिल में भी दबी कोई तो आतिश होगी। आज आई है फिर से याद तेरी, आज लगता है फिर बारिश होगी। प्लीज कम बैक।

0: Hey, this is Bilal Saeed. Thanks for watching Barish. I hope you liked it. If you really liked it, don't forget to like, comment and share it with your friends. And for more amazing songs, don't forget to subscribe on Desi Music Factory's channel.
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569.
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94.

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं

मिसरी चे। खास फरमाश नूर चांडियो, रफीक चांडियो, मीर हसन बुर्दी, जावेद बुर्दी, वली मामंद रिंद कुनड़ी का नवाब शाह का मजीद लेगारी जेके मुझे भाई एहसान अली जा दोस्त हैं। मलिक शाह मुराद मिजरी जरा गौर हो जे हाजी दिल मुराद मिजरी वो लख लुटाया से यसा को न थो पो भी कदर उस्ता निजाकत

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: ई वारसन जो चवण आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हू ज़मीनी तकरार सां चइनि ॼणनि खे क़तलु कयो आहे। SSP लाकाणे जो चवण आहे त ॿई धुरियूं हिक पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर सैद बिरादरी शाह पारां वाक़े जो नोटिस आहे, जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पारां वलारियल कश्मीर में भारतीय ज़ुबान जी मज़म्मत। इसहाक़ डार चयो आहे त वलारियल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे। आर्मी बिरादरी ऐं सलामती काउंसिल कश्मीरनि सां कयल वाइदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि जे ग्रुपनि ते ॻणती आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमाल न थियणु ॾिनी वेंदी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन रितल फितना टे तहत जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जे तुर्बत में ऑपरेशन दौरान फितना हिंदुस्तान जा ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। फरार थियल दहशतगर्दनि जी ॻोल्हा, सर्च ऑपरेशन तेज़। पाक फ़ौज क्रोम सेक्टर मां फितना ख़ारिजी मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि नाकामी सबबि अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो। पाकिस्तान सऊदी अरब सां ख़ुदमुख़्तियारी, सलामती ऐं मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौक़े ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था। हुरमन शरीफ़ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो, समूरी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो। वरे वज़ीर सैद मुरादरी शाह सां एशिया तरक़ियाती बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाक़ात। तालीम, ट्रांसपोर्ट, सिहत, बहिराणियुनि जे तालीम, तरक़ी, डिजिटल मनसूबनि ते ख़्यालनि जी टेर वरिती वई। वॾे वज़ीर सैद मुरादरी शाह चयो आहे त हर ॿार खे महफ़ूज़, जदीद ऐं मयारी तालीमी सहूलियतूं फराहम करण जो अज़म आहे। सिंध हुकूमत एशिया तरक़ियाती बैंक सां वहिंवारी वधीक मज़बूत बणाईंदी। रुस्तम भरसां महर जतोई धुरियुनि में तकरार खां ॿ ॼणा मारिजी विया। फायरिंग में हज़ारो जतोई ऐं मुर्तज़ा महर मारिजी विया। वाजिद जतोई ज़ख़्मी, लाश अस्पताल मुंतक़िल। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में अलहुदा मस्जिद वेझो फायरिंग, हिकु ॼणो मारिजी वियो। मक़तूल जी सुञाणप 30 वरनि जे मोहम्मद शाह थी आहे। लाश अस्पताल मुंतक़िल। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां बिल गेट्स जी मुलाक़ात। पोलियो जे ख़ात्मे बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशनि जी वाखाण कई। रतो देरो भरिसां ॿ मासूम ॿारड़ियूं मच्छी जे तालाब में ॿुॾी फोत थी वयूं। ॻोठु वॾा घुसण में 5 वरनि जी नूरंदा ऐं 4 वरनि जी अमीरा घुसण रांदि खेॾण दौरान तालाब में किरी ॿुॾी फोत थी वई। नओं दंबालो जे कासिम लोन कॉलोनीअ में घर माउ पीउ सिंधु लाश हथायो आहे। पुलिस जो चवण आहे त 65 वरनि जे दिलबर राजपूत जो केतिरा ई ॾींहं पुराणो लाश मिलियो आहे। वधीक जांच कई वई। ऐं पीर जो ॻोठु भरिसां सहतार बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। 21 ॼणा रतो रत। ॻोठु माली सहता में ज़मीन।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देव निवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुमशी نو پدی وجہ د پولیو د ہر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکی ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त ये कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाई जान ये सिद्धराम। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं जी प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी नात, बहुत प्यारी सी नात के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए और जनाब हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का।

0: बिल्कुल जी, क्या बात है क्या बात है। असली ग्लोर हर दिन का शो अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आपको मिलेगी वो खूबसूरती जो कि आप हासिल करना चाहते हैं? थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी होती है जनाब। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज तो करना ही पड़ेगा। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने आप लोगों के लिए क्या ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जिनमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। ओके जी, तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं मुझे जल्दी से बताइएगा, अपने होने का एहसास जलाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, ये इस तरह सबसे पहले आप लोगों को बता दें। और साथ ही साथ जो चीज सबसे ज्यादा बताने वाली वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाला मुल्क कौन सा है। हाँ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है। जो टी लवर्स हैं क्या वो जानते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है? और इसका जवाब अगर आप मुझे देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए जनाब। और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। और आइए हमारे पेज पर, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, ये तीनों काम कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ साथ बताइए आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम का हिस्सा ही जनाब, और हमारी प्रोग्राम की रौनकें तो सही जानते हैं आप लोगों की वजह से होती हैं। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में रौनकें बढ़ाइए और अपने होने का एहसास दिलाइए और मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन से मुल्क में पी जाती है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं और वहां से मालूमात लेते हैं कि भाई जान यहाँ पर बताएं सरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि कल ही बिल्कुल ये बात हुई थी कि भाई अगर आप जाते ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर तो वहां पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होती तो दुकानदार जो होता है ना वो आपको कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है और वो कह देता है कि भाई ये हाँ ये लगाइए। क्योंकि हमारे कुछ जो लिसनर्स ना वो बड़े मासूम है, यानी कि वो गोठाणा माण्हू आहिन, त उन्हनि खे अगर इन चीज जे बारे में खबर ना आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहिड़ी क्रीम आहे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बी ते कहिड़ो फोटो लॻियल आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डब्बी जो कलर कहिड़ो आहे, अगर इहे चीज़ूं तव्हांखे ख़बर न आहिनि त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे तव्हां स्कीम जो हिसो बणिजी सघो था ऐं तव्हांखे बि ठॻियो वेंदो ऐं तव्हांखे बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे नाले सां काई बि क्रीम ॾेई छॾींदो दुकानदार। त इन्हनि चीज़ुनि खां अगरि तव्हां बचणु चाहियो था, तव्हां सही प्रोडक्ट परचेज़ करणु चाहियो था, त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे न सभु चीज़ूं ॿुधाईंदमि त तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीज़ूं फॉलो करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे परचेस करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे कहिड़ा रिज़ल्ट मिली सघनि था। सो इहे कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं तव्हां ॼाणो त ॾाढो बहितरु हूंदो आहे, तव्हांखे आसानी थी वेंदी आहे। सो बिल्कुलु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया कोन, मूंखे ॿुधाईंदा हलो, ऐं तव्हां अगरि इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। उन खां अलावा अगरि नंबर्स तव्हांखे ॿुधाया वञनि प्रोग्राम जे अंदरि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो, तो नंबर तव्हां लाज़मी डायल कयो। नंबर ते तव्हां राबतो करे सघो था, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो, भाई साहब खे ॿुधायो, तारिक भाई भाई तव्हां जो जेको आहे कॉल अटेंड कंदो ऐं तारिक भाई खे ॿुधायो त बाबा असां फलाणी जॻह तां प्रोग्राम ॿुधूं था ऐं किथे किथे तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वञे त हू तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए छॾींदा। ठीक हो गया, और कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये आसानियां आप लोगों के लिए हमने तो कर दी है, लेकिन अब थोड़ी सी आसानियां हमारे लिए भी कर दीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ साथ हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। नसीर खोसो भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं, लिखते हैं कि नादान इंसान 100 साल जिंदगी के लिए जी ले लेकिन लगन से मेहनत करता है, मगर हजारों साल कब्र में पड़ता है हमेशा की आखिरत, मगर कोई फिक्र नहीं उसे। यह गाल तो बिल्कुल भली करे चली आए। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम आरजे, आपकी अभी सर मॉर्निंग हुई है। चलिए जी, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। और इनका अलावा फहीम शेख हमें सुन रहे हैं, कहते हैं टुटरी टुटरी जुड़ी त ॾिस ज़िंदगीअ ॾे मुड़ी त ॾिस हज़ार लख करोड़ छॾे बणजी हिकु ॿुड़ी त ॾिस वाह वाह वाह वाह बहुत बढ़िया वालेकुम अस्सलाम अलैहि सलाम अदस अदा कहिड़ा हाल आहिनि हाल पलाल आहे ख़ुशि आहियो सफ़ा चाकु स्लेट कलम मस्जिद डबी हाल असांजा पलाल कोलन अलहमदिल्ला असां ठीकु ठाकु आहियूं मज़े में आहियूं ऐं ज़िंदगी खे फुल ऑन जीअण वारा आहियूं कहिड़े असां बि अची वियासीं प्रोग्राम त लाजवाब आहे हमेशह जीअं थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कोन लगाई डी स्किन जो फेस वॉश तव्हां इस्तेमाल करण जे बारे में छा सोचियो आहे और फरवा कहती हुई अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे आप ही आप कैसी हैं तबीयत कैसी होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल यस आई एम गुड आप बताएं कैसी हैं अली रजा लगारिया में सुन रहे हैं गोठ जाम खान लगारी से कहते हैं सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी हैं शो तमाम नाइस है सॉन्ग असां सदाई दरिया वांगुर चाढ़ में भाई मुमताज मलई और प्ले करना डेडिकेट अजहर लगारी आकिब लगारी आर जी गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर इमाम बख्श खोखर एंड खालिक लाशारी जी नाले ओके आई ट्राई अच्छा किशोर भाई आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहाँ थे इतने दिन में वैसे आज सोच रही थी कि आज याद करूंगी किशोर भाई काड़े घूमती हुई आज तो आप खुद ही शामिल हो गए चले आपको वेलकम कहते वैसे बताएं कहाँ गुम हो चुके थे तबियत तो ठीक है ना या हिन मौसमी बुखार तव्हांखे बि न छॾियो आहे अच्छा हुन खां अलावा अख़्तियार अली गब्बर हमारे साथ है अख़्तियार अली गब्बर भाई है विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर से अख़्तियार अली गब्बर ज़ुल्फ़िकार अली गब्बर अली दोस्त गब्बर प्रोग्राम बेस्ट थैंक यू पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए अच्छा हुन खां अलावा बतूल हमारे साथ है बतूल लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आई एम बतूल फ्रॉम सिटी मटियारी से कल मैंने अम्मी के साथ हैदराबाद रेशम बाजार से एक बड़ा सा रेडियो खरीदा लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपकी प्यारी सी आवाज ने हमारे रेडियो के स्पीकर अच्छा चले नुकसान खैर हो चुका तो अब इसका मैं कैसे हर्जाना कर सकती हूँ और आप कहती हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीदी मैंने भी खरीदी अच्छा सा रिजल्ट मुझे मिला है और सॉन्ग सुना है निगहत नाज का अच्छा निगहत नाज ये जो गाना आपने लिखा है ना ये मुझे जरा समझ नहीं आया ये लिया मालिया कौन सा गाना है मुझे नहीं पता तो आप जरा सही से मुझे बताइए कौन सा गाना है ताकि मैं आपके लिए लगा सकूं ठीक है और बतूल आप हमारे साथ मौजूद हैं आपको वेलकम कहते हैं और फरवा कहती हैं आप अर्ज किया है गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं ये शायरी कारा आनीदा चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम चाचा ठीक आयो कारे गुमती ब्याह होया और जैन अली हमारे साथ कहते हैं इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले हाय अल्लाह ये हसीन चेहरा जो क्या ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कन पाया हाँ तुम सभी के छो बस तान भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तेजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तक दफो इस्तेमाल करो तक खबर पवी बाबा सिद्रा एतो छो बुधाए थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जबरदस्त प्रोडक्ट है जी तस्तेमाल कह तक खबर पवी बाबा वाह जो प्रोडक्ट है वाह जो रिजल्ट है वाह जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए सो लगाइंदा रहो सुना थींदा रहो टाइम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था जल्दी वापसी तमा डींदासी तमा करे न वंजो इते वेठा होजो ओ हिय वनी ओ हिय मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए
1: इट्स वन
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जब कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ही वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किए ना सबके बड़ी अच्छे वाले रिजल्ट जो है ना वो उनको मिले हैं और बड़ी पॉजिटिव से रिस्पॉन्स हमें उनके मिल रहे हैं कि भाई हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर इतनी ज्यादा खूबसूरती हासिल कर चुके हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कमाल के प्रोडक्ट्स, तो अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जरा पहले सुनिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके कितने सारे फायदे हैं जो आपको मिलने वाले। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों के लिए भाई कहते हैं ना लगो तो लखा वारो सीन आए जो तो ही जडे ब प्रोडक्ट तमा इस्तेमाल करना ना तांगे खबर पड़ी वेंदी तो वाकई ही ब प्रोडक्ट तमा जे खूबसूरती लाए छो ए केतरा जरूरी आ है। तो छो जी अगर गाल कही वने ते तमा जी खूबसूरती जका होनी ना अक्सर तमा डिठो हुनो तो खोट सारा मानो इलाही सारा प्रोडक्ट यूज करना इलाही सारा प्रोडक्ट जडी तमा यूज करे वेंदा हो ता तरी तमा जी स्किन जका ना थोड़ी खराब थी वेंदी है या अगर तमा जी स्किन जे हिसाब वारा प्रोडक्ट तमा के नाहन मिलना तो जाहिर सी गल है तमा जी स्किन जका खराब थने चांसेस काफी ज्यादा हुंदा है। अगर तमा भी चाहो ता बाबा असन जी स्किन छो मुफ्त में खराब थे असा इतरा पैसा भरे करे प्रोडक्ट लगायूं था आई सही प्रोडक्ट अगर न इस्तेमाल थे सही प्रोडक्ट न असानी स्किन के मिले तो बाबा केड़ो फायदो। अगर तमा भी चाहो था तो तमा जी स्किन जी हिफाजत थे तमा जी स्किन ते सुठा प्रोडक्ट यूज थे तो तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सबका पेरी ते तमा के नालो अचन घुर्जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको तमा पांजे करीबी जनरल स्टोर से वेना तमा के आराम सा ही प्रोडक्ट मिली सगे थो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा गाल ता के बुधाईंदी अला त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आ है आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डब्बी जडी तमा दिसना ना त तमा अगर दुकानदार के चो था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम दे हु ता के का बी क्रीम पकड़ाए चले थो त तमा के इहा खबर हो जे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डब्बी जे मथा एक डॉक्टर माई जो फोटो आहे डॉक्टर माई जो फोटो इन लाइ डनो वयो आहे छो त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के उनन तमाम डॉक्टर्स मिली करे तैयार कयो आहे जेके तां जी स्किन सां रिलेटेड तमाम जे लाइ प्रोडक्ट तैयार कंदा आहिनि। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी आहे बाबा त ही हिकड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे इन जे डबी जे मथा डॉक्टर माई जो फोटो आहे ॾाढी सुहिणी डॉक्टर माई आहे। सो तव्हां अगरि वञो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस कयो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾिसी करे सही तरीक़े सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जांच करे पोइ तव्हां परचेस कयो छो त अॼुकल्ह स्कैम ॾाढो थिए पियो मार्केट में तव्हांखे दुकानदार ॾाढो ठगिन पिया त तव्हां थोरा अगरि मासूम आहियो तव्हां ॻोठाणा आहियो त तव्हांखे थोरी ख़बर हुजे बाबा त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु वञो था ऐं तव्हां उनखे ॿुधायो दुकानदार खे भाई साहब हाणे ॾिस असांखे ख़बर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम कड़ी है असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करे वेंदी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मालूम जी भी तक डी आया गौर क्या कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर तो खबर पे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट है और क्या ही बात है। अच्छा हाँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी और आप लोगों को मैं जरा डिटेल बता दी चलूं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये जनाब एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुका है जो कि भाई सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बड़ी अच्छी बड़ी कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमें क्विक सा रिजल्ट मिल जाए और ऐसा रिजल्ट जो कि भाई कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं और उनका ये दावा होता है कि भाई फलां दिनों में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे तो उनके अंदर बड़े केमिकल हार्श से केमिकल डाले जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है ना जल्दी में वो मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद आपके चेहरे पर बड़े अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपको इतना जल्दी रिजल्ट क्यों दे रही है तो जरा उसकी जानिब भी आ जाते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ दो रातों में यूज करने से आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना वो इतने अच्छे क्यों मिल रहे हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन जो है ना इनकी एडिशन की गई है और विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स के साथ साथ अल्फा आरबोटीन है कॉजिक एसिड है ग्लूटाथायोन है ये चीजें बीड के गई हैं लेकिन जनाब यहाँ पर शो स्टॉपर जो है वो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स हैं क्योंकि विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स जो है ना इन की जरा बात आप लोगों को बता दी चलूं कि ये जो दोनों चीजें हैं ना ये जो महंगे महंगे फेशियल्स होते हैं ना जो बड़ी हजारों में हो रहे होते हैं आपके चेहरे पर तो उन महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स एड किए जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जनाब 2-in-1 फार्मूला बन चुका है यानी कि एक नाइट क्रीम तो है लेकिन ये आपको जो रिजल्ट्स देगी वो बहुत अच्छे खासे जो है ना फेशियल्स कराने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से. बाबा मैजिक थी वेंदो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सिर्फ बर रातियूं ऐं तव्हां ॾिसंदा तव्हां खे केॾा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली चुका आहिनि. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कोई भी साइड इफेक्ट न आहे छो त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे. ऐं हुन खां अलावा तव्हां सोचींदा हूंदा त बाबा हाणे हिन में माइक्रो बीट्स बि आहिनि, वाइटमिन ई बीट्स बि आहिनि, अल्फारबुटीन बि आहे, कोजिक एसिड बि आहे, ग्लूटाथायोन बि आहे. त इहे सभु चीज़ूं ॿुधी करे साउंड्स ईअं महसूस थिए थो त भई ॾाढो महांगो प्रोडक्ट हूंदो. त इहा बि चीज़ तव्हांखे ॿुधाईंदे लाइ ही एतिरो महांगो प्रोडक्ट कोन्हे को मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहियो आहे. रेग्यूलर जीअं तव्हां पंहिंजा इलाही सारा पैसा नाइट क्रीमनि ते वेस्ट कंदा आहियो न, उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर चवंदा आहिनि न, सस्ता रोए बार बार ऐं महांगा रोए हिकु बार. उहा कार अथव एॾो महांगो न आहे त तव्हांखे मतिलबु तव्हां अफोर्ड ई न करे सघो. मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे. ऐं तव्हां वठो बाबा उहे जेके तव्हां बेकार नाइट क्रीमूं यूज़ कयो पिया न, उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर प्रोडक्ट आहे. ॿियो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे. तव्हां सभु माण्हू लॻाए सघो था, मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई इस्तेमालु करे ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त कयो बाबा. हाणे तव्हांजे ऐं ख़ूबसूरती जे विच में सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको आहे न हथु अथव. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां बि इस्तेमालु करे ॾिसो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे ज़रा सुञाणियो बाबा, सुञाणियो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था त तव्हांखे डायल करिणो आहे 03-1250-9070-5950-9907. ही तारिक भाई जो नंबर आहे. तारिक भाई मतलबु वेठो हूंदो आहे मोबाइल जे जंहिंमहिल कॉल कंदा न त तव्हांजी कॉल जेका रिसीव थी वेंदी ऐं तव्हांखे रिस्पॉन्स मिलंदो ऐं तव्हां किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराइणु चाहियो था उहो तव्हांखे सॼी डिटेल्स तव्हां हुनखे ॿुधायो. तव्हांखे ॿुधाए छॾींदो त किथे किथे मिली रही आहे या वरी किथे किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे. ऐं हुन खां अलावा ॿियो नंबर आहे अगरि मतिलबु कॾहिं तारिक भाई जो नंबर बंदि हुजे या न रिसीव थिए छो त हर को माण्हू कमकार में थोरो बिज़ी बि हूंदो आहे त तव्हांखे हीउ ॿियो नंबर ॿुधायां थी. इन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो. ऐं नंबर आहे 03-273-8-4309-3332-8484-9. तव्हां हिन नंबर ते बि राबितो करे सघो था. इहे नंबर तव्हांजे आसानी जे लाइ आहिनि जीअं तव्हां परेशान न थियो ऐं बसि तव्हां नंबर ते राबितो कयो ऐं तव्हां हुननि खां डिटेल्स वठो भाउ असां किथां परचेज़ करे सघूं था या फलाणी जॻह ते कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम त हू तव्हांखे गाइड करे सघनि था ऐं छा प्राइस वग़ैरह आहे तव्हां हुननि खां मालूमात वठी सघो था. ऐं किथे किथे फेस वॉश अञा ताईं अवेलेबल नाहे थियो त तव्हां उहो बि हुननि खे ॿुधायो त हू तव्हांखे ॿुधाए छॾींदा त किथे किथे फेस वॉश तव्हांखे मिले थो या वरी किथे किथे अवेलेबल करायो वञे. ओके सो ही कुझु ॻाल्हियूं असां तव्हांखे पूरे प्रोग्राम में ॿुधाईंदासीं तव्हांजी भलाई जे लाइ आहिनि बाबा. तव्हां हिकु मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लाज़मी तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो. तव्हांखे यकीन ॾाढो सुठो रिज़ल्ट मिली वेंदो ऐं न मिले त तव्हां पोइ मूंखे चइजो. उन खां अलावा अॼु जो जेको मां अवां खां सवालु पुछियो आहे, सवाल इहो आहे जनाब त दुनिया में सभ खां वधीक चांहि जेका आहे उहा कहिड़े मुल्क में पी वेंदी आहे. चांहि जेका आहे उहा किथे सभ खां वधीक पी वञे थी इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो था. इन खां अलावा तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, तव्हां सां सुहिणियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं तव्हांजा जेका सुहिणा सुहिणा फीडबैक उन्हनि खे शामिल प्रोग्राम कयूं था. पर हीउ जेको गानो हलायो आहे न, अचो त पहिरियों गानो ॿुधूं था.

में जी क्या बात है, यहाँ पर आपके कमेंट्स ऊपर भी चलते जा रहे हैं, तो जरा मैं जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स जरा रीड करती जाऊँ। यहाँ पर आप सुन रहे हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिएगा, क्योंकि ये बड़े कमाल का प्रोडक्ट है और बड़े काम का प्रोडक्ट है, तो जरा यूज करके देखिएगा। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, और आपको भी वेलकम कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी, अच्छा हिदायतुल्लाह आपने टॉपिक का जवाब दिया है, सही हो गया। और चाचा खालिद कहते हैं कैसी है वेगी बैटरी, चाचा को दूल्हा बना दिया आपने, कल रिपीटेड शो सुना था मैंने, अब तो चाचा ना करें, चाचा ना करें। वैसे बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और दर्दी दिल हमें सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। और कहती कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो वक्त गुजर जाए उसे सोचकर खुद को मत तोड़ो, कभी लोग और कुछ लम्हे सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा साजिद भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है। फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया। और फहीम भाई कहते हैं कि सर खालिद शादी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो, सदा मुस्कुराते रहो। भाई और कोई नहीं, बस आंटी के साथ दोबारा से जरा चाचा की शादी करा दी हमने, तो ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, बता हमारी आंटी के थोड़ो गुस्से अच्छी बने। अच्छा बशीर अहमद बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बशीर भाई आपको वेलकम हो गया। और किशोर भाई लिखते हैं कि आपके सवाल का जवाब, और अगर वाकई ऐसा भी हो सकता है। और इकबाल आशारी कहते हैं जो सोनू खान लाशारी बीरपुर खास से बाजी सिद्रा टॉपिक ओके। ओके जी सब भाइयों को वेलकम हो गया। और साथ साथ जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। गुलाबा जो गुल कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और जी वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, अदी सिडो असा भी अच्छी वैसी तमाम जी प्यारी महफिल में, थैंक यू सोना भा। चाचा कहते असा की सबनी ठगियो आ, डी स्किन क्रीम वारन ठगियो अच्छा थियो न बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वारा न ठगींदा पर दुकानदार तव्हांखे ठगींदा, छो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था, वरी दुकानदार तव्हांखे को ॿियो प्रोडक्ट ॾेई छॾे थो, त तव्हांखे हिन मामले में ॾिठो वञे त तव्हां स्केम जो हिसो थी वञो था, सो तव्हां थोरो बचो हिन चीजुनि खां, ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं सही तरीक़े सां सही तव्हांखे ॻाल्हियूं ख़बर हुजनि की तव्हां वञो त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई परचेज़ करे अचो। अच्छा हुन खां अलावा हमारे साथ हैं जी, अच्छा अब्दुल रजाक भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं, लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और मेलसी से भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा परचेज कीजिएगा। रशीद खोसो भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और जी एस एन अरबाणी आ चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना सलाम अदर, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी, कैसी हैं आप और कैसा रहा कल का दिन आपका मुस्कान जी? कल मैंने छुट्टी की, कल आपने छुट्टी की, लेकिन कल इतनी ज्यादा रश थी कि भाई मेरा दिमाग ही घूम गया था। चले अच्छा था, वैसे आपको रश में मजा नहीं आता था ना, तो सही है, बहुत बढ़िया हो गया। और फरवा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी। जैन अली लिखते हैं कि और फिर मुझे अपना आदि बना के बाद उसे याद आया कि उसे मोहब्बत तो करनी ही नहीं थी, अरे वाह क्या बात है। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा में छोटे छोटे मसलों की वजह से शो ना छोड़ना आए हाँ, पर अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे प्यारे चाचू मुझे छोड़कर चले गए, अल्लाह काफी अफसोस हुआ, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और हाँ मुझे पता चल गया था कि भाई कुछ तो हुआ ही होगा जब ही आप प्रोग्राम में नहीं आ रहे, ओके। और बतूल आपका गाना हम लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुजाहिद बोजार कहते हैं हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बडेरी सिद्रा जी, कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी, क्या याद करोगी, मैं आपको आज कराची से सुन रहा हूँ, क्या बात है जी, उतारो एहसान असां ज़िंदगी भर नज़ानी दासी। तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे ॾिसजो, ठीकु आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अगरि कोन थी मिले, फर्ज़ कयो नथी मिले, त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे प्रोग्राम में, उन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो। ऐं जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो कंदा आहियो न, त तव्हांखे ॿुधायो वेंदो आहे त किथे किथे अवेलेबल आहे ऐं किथे किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे।

बिल्कुल जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए. अबरो रहमत अली हमारे साथ हैं, गुल मोहम्मद पतूजो, बरकत अली पतूजो, रहमत अली पतूजो, और कहते हैं माहे माकोल से आपको. अच्छा, हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं आपको सलाम जी. वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी. और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ है, कहते हैं डी स्किन लगायो नाइस आहे. वाह सही वाह, वाह सही वाह. यो तव जेके जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएन था बाबा, वो यो चवन था तहां भी हणो बाबा, तहां भी सोना थियो, छो त हर कंहिं जो हक आहे खूबसूरत थियण. ऐं साजिद भाई हमें सुन रहे हैं फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से. साजिद बाबा का गाना सुनाते हैं आपको, बहुत शुक्रिया.

जी रमजान भाइयों में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम वीआईपी है। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। कहते कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मिजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने नियाज में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे मुझे तो ये पता भी नहीं कि डॉक्टर कैसे देखते हैं। आइए मासूम, अच्छा डॉक्टर कैसे दिखते हैं ये भी इनको पता नहीं है। पूरी जिंदगी में आपने कभी डॉक्टर को नहीं देखा? सच्ची बताए मुझे।

मोहित जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप इंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो क्या ही बात है, और ऐसे आकर मुझे बता दिया करें कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आपको रिजल्ट कैसा मिला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हसरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं मैडम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रही थी हाणे मां चवां तो फेस वॉश टी सी एस कर मुखे त रोज सुभाणे सुभाणे थी करे तव्हां छो बाबा हिक ॿिए जे आसरे ते वेठा आहियो ईअं एॾी सुञ थी वई आहे छा भला मुल्क पाण वठो बाबा पाण वठो पाण वठो उनखां अलावा किशोर भाई कहते अदा अच्छा अॼु आउं न चाहां त तूं सच में मुंहिंजो पुछी हां छा ऐं मूं काफ़ी शो में नोट कयो आहे ऐं कमेंट ऑफ हुजण जे बावजूद बि शो खे लाइक करे शो लास्ट ताईं ॿुधंदो हुअसि पर कॾहिं पंहिंजो नालो बि न ॿुधो हुयो। अच्छा भई कॉमेंट्स ऑफ हूंदा हुआ त बसि कंहिंजो बि न नालो खणंदासीं, बाक़ी मूंखे अहसासु थींदो आहे त तव्हां हमेशह मूंसां गॾु आहियो ऐं जॾहिं पंहिंजा पंहिंजो हिकिड़ो अहसासु हूंदो आहे न बसि उहो अहसासु कंटिन्यू रखण जे करे तव्हांखे चऊं था थैंक यू सो मच। ये तव्हांजो वैसे मोहबतूं आहिनि, वैसे सही कहते मोहबतें एक तरफ़ा से नहीं दोनों तरफ़ा से निभाई जाती हैं और तव्हां इन में भरपूर हिसो वरितो आहे। बस हाणे हिकिड़ो कमु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसो ऐं भाभी खे बि वठी ॾियो, भाभी खे बि चओ बाबा भाभी बि यूज़ करे ॾिसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और दर्दे दिल कहती हीअ टॉपिक हा सही जी अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे कहते हैं उसकी सारी आदतें एक तरफ मगर हाय वो उसका हंसते हुए चाय पीना, हंसते हुए चाय पीना सही है। अच्छा पहलाज राय हमारे साथ है लग इस्लाम कोर्ट है शायद, और आप कहते हैं थर्ड पार्कर से ठीक है और आपको वेलकम कहते हैं जी नमस्ते के साथ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोग्राम में बातें होती हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर अभी तक आप नहीं लगा चुके हैं तो जरूर से लगाइएगा, और जरा मालूमात लीजिए आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए या फिर अभी तक नहीं, क्योंकि अवेलेबल कराएंगे तभी तो जाकर परचेज करेंगे, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, परचेज करते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। टाइम हुआ है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सेक्टर मां फितना फारदीन मुल्क में दाखिल करने की कोशिश नाकाम बनाए सरी अफगान तालिबान पोस्टू छे फरार थी वया सिक्योरिटी दरिन मौजूद नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकिन ते फायरिंग कई सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के वजन से मजबूर कर

0: Chile.
1: लाड़पाड़े में हथियारबंदन की कार से फायरिंग में भारन सूदो चार जना कतल लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार ता चैन भारन के कतल किया है। पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो है संदस भाव मंसूर खोखर अली शेर खोखर है कार ड्राइवर गुलाम मोहब मंगने जो मार एक औरत जख्मी थी है। वारसन जो चवण है तो पेंजे ही बिरादरी के मानू जमीनी तकरार ता चैन जणन के कतल किया है। एसएसपी लाड़काणे जो चवण है बई धुरियों पेंजी बिरादरी के मानू के कतल में मुलविस रही आहन। वडे वजीर सैद बिरादरी शाह पारा वाके जो नोटिस वरतो वयो आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
4: मालवन भारन लाइ खुश खबरी, 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरनि में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बणाए। हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि वटि दस्तियाब आहे।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
7: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-310509-03000-310-5109।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक
0: करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
9: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014513456 ऐं तौकीर अहमद 03106623793।
10: अस्सलाम वालेकुम अदा।
11: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
10: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
11: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
10: न अदा।
12: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
10: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
11: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
10: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
12: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
11: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
13: 03013992836।
14: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।
15: خالد محمد لندن کراچی کھان تعلیم MBBS گولڈ میڈلسٹ FCPS MRCP لندن

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए है जनाब। चाहे आप मर्द हंसाते हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहा है और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखता जा रहा है। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में आप भी छा जाना चाहते हैं, तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या बात है, इतना कमाल का कोई प्रोडक्ट है ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं देखा। क्योंकि भाई ये सबसे जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों को बताते हैं या फिर आप लोगों को समझाते हैं ना कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसके बारे में ये तमाम चीज़ें जो ना वो नोटिस किया करें कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के रिलेटेड है या फिर नहीं, आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, आपके चेहरे पर किस तरह के जो प्रोडक्ट है वो सूट करते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को पहले से नॉलेज होगी या फिर पहले से आप उसके बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को जो है ना स्किन से रिलेटेड कितने भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको पता होगा आप जाते हैं मार्केट और वहां से जाकर आप वही वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप लोगों की जिंदगी जो ना थोड़ी सी आसान हो जाती है। और या फिर कुछ लोग वरी ऐसे होते हैं जो महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं, सैलून जाते हैं, घंटों बैठते हैं, हजारों पैसे वहां पर देकर आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हल्का फुल्का सा फेशियल करा लिया, हाँ जी रिजल्ट्स मिल गए, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रोसेस 8-10 दिन के बाद दोबारा से वही चीजें फिर रिपीट होती रहती हैं। तो अगर इन तमाम चीजों से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर दे, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ती हुई जिंदगी में ना हमें चाहिए भाई सुकून के दो पल जो कि हम अपने लिए थोड़ा सा अपने ऊपर लगाएं, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, थोड़ा सा स्किन केयर करें। और या तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं कि वो घंटों जाकर सैलून भी लगाए पैसे और घंटों जाकर फेशियल्स वगैरह कराएं। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये एक छोटी सी डब्बी जो है ना, ये आप लोगों की जिंदगी को इतना आसान बना देगी, इतना आपकी जिंदगी में जो है ना वो रंगत भर देगी, खुशियां भर देगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई हम पहले कहां थे, क्यों नहीं लगा रहे थे, क्यों नहीं सिद्रा की बात मान रहे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो है ना खास बातें जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स एडिशन है जनाब। इससे ये फायदा होगा कि भाई आपको जो है ना ये एक नाइट क्रीम है, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो महंगे महंगे फेशियल्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या पैसे नहीं है, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे और आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। वैसे भी कितना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द की मुनासिब केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये क्रीम आपके रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। आपकी जिल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए अपनी स्किन केयर पर तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जनाब, क्योंकि अच्छी तरह केयर की जाए तो आपकी जिल्द के चेहरे की जो ताजगी है, जो निखार है, जो खूबसूरती और जो आपकी स्किन जवान है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो थोड़ी सी केयर करें और सही प्रोडक्ट का इंतखाब करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें जिसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई हैं जो की स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, खवातीन भी लगा सकती हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको देगा ऐसा परफेक्ट वाला निखार कि आप बोलेंगे आए हाय जस्सी करा दे। बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ 2 दिनों में वाजे नतायज आपको मिल रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम

तो डी स्किन का फेस वॉश भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। और डी स्किन की ब्यूटी क्रीम तो भाई आप जानती हैं कि क्या भाई, ये शो स्टॉपर है हमारे, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 आई बी ओ नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर तव्हां डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं उतां वञी आराम सां परचेज करे अचो छो त जॾहिं तव्हां आराम सां परचेज कंदा न पोइ तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी वेंदी ऐं तव्हां चवंदा बसि फलाणे जनरल स्टोर ते वेंदासीं उतां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ईंदासीं का मसले जी ॻाल्हि ई कोन्हे का कोन असांखे हाणे शहर वञिणो पवंदो या असांखे इलाही सारी दुकाननि जा धिका खाइणा पवंदा ऐं दुकानदार अजीब हिकिड़ो जेको आहे न सीन क्रिएट कंदा आहिनि भाजी ही प्रोडक्ट वठी वञे भाऊ ही प्रोडक्ट वठी वञे ऐं जॾहिं तव्हांखे ख़बर न हूंदी आहे त पोइ तव्हां ज़ाहिर आहे त कोई ॿियो ई प्रोडक्ट वठी ईंदा पोइ तव्हांखे ख़बर न हूंदी त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु करे रहिया आहियो उहो प्रोडक्ट वरी अलाए कहिड़ो प्रोडक्ट हूंदो सो तव्हां बाबा इन्हनि चीज़ुनि खां बचो ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबे जे मथां जेको आहे न डॉक्टर माई जो फोटू अथव ॾाढी सुहिणी बि आहे भई माई आहे डॉक्टर सो तव्हां ॾिसंदा त उनजे मथां जेको आहे न 2 days फार्मूलो बि हूंदो त 2 ॾींहनि जे अंदरि जेको आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी ऐं डॉक्टर माई जो फोटू अथसि इहे निशान जॾहिं तव्हां ॾिसो त तव्हां यकीन करे वञो बाबा इहा अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वठी अचो ऐं सोणा सोणा थी वञो ऐं उनखां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां राजे टाइम लॻाए सघो था हीअ नाइट क्रीम आहे आहे नाइट क्रीम पर 2-in-1 फार्मूला यानी कि तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी फेशियल वारा सो लॻायो ऐं सोणा सोणा थी वञो। अच्छा मां अव्हां खां सवाल पुछो आहे त दुनिया में हांजी सॼी दुनिया में सभ खां वधीक चांहि जेका आहे उहा कहिड़े मुल्क में पी वेंदी आहे इन जो तव्हां मूंखे जवाबु ॿुधायो पिया तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स मूंखे मिलंदा वञनि पिया ऐं तव्हां काइंडली पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो लाइक ऐं शेयर करणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे सो पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो जे इलाही सारे माण्हुनि खे ॿुधाए सघूं त बाबा तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पंहिंजी ख़ूबसूरती जा प्रॉब्लम जेके न उहे ख़ूबसूरतीअ जे अॻियां जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उहे सभु दूरि कयो ऐं ख़ूबसूरतीअ ऐं तव्हांजे विच में सिर्फ़ु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ासिलो हुजे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं सोणा थी वञो। अच्छा तव्हांजा फीडबैक आहिनि बिल्कुलु शामिल प्रोग्राम रखूं था ऐं गाना बि आहिनि जेके असां बिल्कुलु ॿुधंदा वेंदासीं पर हिते हिकिड़ो कमु था कयूं हीउ वारो गानो हलायूं था सभ खां पहिरीं। अच्छा हीउ मुमताज़ मुलाई जी आवाज़ में गानो आहे ऐं अधे हिकिड़ी फरमाइश कई सो ही गानो ॿुधंदासीं। अच्छा असांखे आयशा ॿुधे पई आयशा मेमण असांजी प्यारी हिकिड़ी लिसनर आहे आयशा मेमण असांखे ॿुधे पई बाबा ठेड़ी मां ऐं आयशा जेको आहे असांजी ॾाढी सुठी हिकिड़ी लिसनर आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु बि कंदी आहे डी स्किन जो फेस वॉश लॻाईंदी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदी आहे ऐं ॾाढी माशाल्लाह सुहिणी थी पई आहे सो तव्हां बि अगरि इस्तेमालु करणु चाहियो त तव्हां बि इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो असांजी प्यारी आयशा जी आहे। सो आयशा थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु आहियो प्रोग्राम डेली तव्हां ॿुधंदा आहियो ऐं वॾी शौक़ु चाह मुहबत सां ॿुधंदा आहियो सो तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि।

ओके जी ओके ॾाढो भलो गानो ॿुधूं था अनवर भाई हमारे साथ मौजूद हे ते भली करे आया वेलकम तव्हां जे अचण सां रौनक वधी वई भा तव्हां जे अचण सां बि रौनक वधी वई जियो करे से और आपने टॉपिक का जवाब दिया अनवर भाई बहुत बढ़िया हो गया और मोहम्मद समान भाई क्या कहते हैं यो मुखे लॻे थो तव्हां थोरी थोरी टोक कई आहे माना हाणे वॾा थी विया टोक बि करे वञो था मोहम्मद भाई मोहम्मद समान भाई सुधर जाए सुधर जाए अच्छा मुलाई मुजाहिद बोजार कहते ओ सिड्डो टॉपिक मेरे ख्याल में सबसे

0: दादा चाय चाय ना मैं पी जाती है, क्या बोलती तू, मैं एग्री नहीं करती आपसे। दर्दे दिल कहती है, तभी तो मोबाइल को कान से लगाकर सुन रही थी। चंदा कान की बातें बता, अच्छा काम की बातें बता रही थी। मैंने कहा ये काम की बातें, कान की बातें कौन सी होती है। सही सही, हाँ जी मैं सारी काम की बातें बताती हूँ, आप कान लगा के सुना करें। रिजवान अली हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू थैंक यू। हम कैसे माने। अलीशा क्वीन कहती है कि खुद को किसी की अमानत समझकर हर वक्त वफादार रहना मोहब्बत है। ओ या गाल का एक ना सोनी। और कहती है कि मैं तुम्हें चांद कहूँ ये तो है मुमकिन, मगर लोग तुम्हें रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं। वाह वाह वाह वाह, इसे भी कहते हैं मोहब्बत। क्या बात है। ओके जी, फहीम भाई कहते हैं कि अदा बस केतरा मानो
1: तू के मारी दे मुझा दुआ।
0: हाँ भाई तहां जड़ो सादो मानो सा को निठो सी वाकी पांच पूरी लाइफ में अखाच लाइफ में नहीं देगा। भाई तहां ये हमेशा सादा रहजो, ठीक है, तहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहजो। और अलीशा कहती है कि मेरे प्यारे भाई सदाम हुसैन को सलाम बोले सिस। जी जी बिल्कुल, आपके भाईजान को सलाम। और रिजवान कहते हैं कि मेरे नाइस हुई आपका, प्लीज सॉन्ग सुनाओ, आपको बहुत आपकी मेहरबानी होगी। जी जी मारे सानी तांजो गानो हलाए बैठूं था। और कहते हैं कि काश तो मुखा पुछी तो के छा खपे, माँ हथ हथ ते रखी जमा तुझो साथ खपे। वाह वाह वाह
1: वाह।
0: अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं कि सिडो डी स्किन फेस वॉश नहीं मिल रहा जी टी के में, आज तो गाना प्ले करो शाहिद भंगवर का अल्लाह मेली मैयारा। माँ हलाया थी बिल्कुल लाइ गानो तां डी स्किन जो फेस वॉश अगर नथो मिले तो तांके जो को नंबर प्रोग्राम बुधायो ना नंबर ते एक दफा तां राबतो करी वठजो, ठीक है। जदी तां राबतो कना तो तांजे करीबी जनरल स्टोर ते इजीली डी स्किन जो फेस वॉश जे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे अवेलेबल थी वेंदी, ठीक
1: है।
0: अच्छा एसन कहते हैं शो भी मैंने रात को सुना था, वैसे मजा था कल वाले शो में। हाँ कुछ ज्यादा ही वाली एनर्जी थी। अच्छा फरवा आपने हमारा शो लाइक और शेयर कर दिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे मटियारी से। ओके भाई को वेलकम कहते हैं। दर्दे दिल कहती है कि चंदा अब वो सॉन्ग भी प्ले कर दो एंजल वाला, जिसे सुनकर लगता है हवा में उड़ रही हूँ। हाँ हाँ लगाया थी लास्ट बताएंगे, थोड़ा सबर कर। अच्छा उनके अलावा पहलाज राय कहते हैं, अच्छा पहलाज भाई आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं तू जो हिस्सो गाया बात चरी लगी अथो वाकई ये तां सही था जो।
1: तो
0: छा कयूं छा कयूं बुधायो त ऐसन कहते हैं आज तक मुझसे तो आपने ये नहीं पूछा कहाँ थे, पूछा है भाई बहुत मर्तबा पूछा है, आप भुलक्कड़ हो गए आजकल लग रहा है मुझे गजनी गजनी। जब बहुत दिनों के बाद आते हैं तो पूछती हूँ कहाँ थे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे थे नहीं। और कहते मुझे ये फील होता है नन ता यो फील बिल्कुल भी न कहो। और जेन कहते हैं इश्क में जो ना फना हो वो मोहब्बत किससे कैसी, गुलाम बादशाह का ओएसटी सुनाए। बुधराया थी बुधराया थोड़ा सबर तक कहो, तक्कर भला छाजी तव
1: खैर
0: जड़ी गाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा, अगर नथा कयो त या खेर जड़ी गाल कोने का, तांके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करनो पड़ो। अमान अल्लाह महर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। वसीम अली आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी। और सालार अली कहते हैं सलाम हाउ आर यू, शो बेस्ट है, टॉपिक का पहले से आपको जवाब मिल चुका है, मैं बताऊंगा तो कॉपी कहेंगे सिस्टर। अरे अल्लाह केड़ा मासूम आयो कसम सता सब। अच्छा मोहसिन अली भी हमें सुन रही है, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है मोहसिन, बहुत शुक्रिया। और साजिद भाई आपको अच्छा कहते हैं सिदरा मुस्कान असान जी भी मोकल पूरी थी, चार महीना बस दुआ कयो वरी दुबई मां मैसेज कंदा सी, दुआ कयो खैर सां पहुंचा। चलो जी अल्लाह कंदो तां खैर सां पहुंचंदा, आई बहुत शुक्रिया तां से गड आयो, तां जो मोहब्बतूं आइन बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तां लगायो पया कोन यो बुधाए जो बतूल गाना वटु पंजो।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और इसी के साथ साथ हजार भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं। अनवर भाई कहते हैं अन्य चौथा सिंध में, अल्लाह जाए बुधा कसम दे टैलेंट आए बाबा केर तुझे ना है। और चाचा कहते हैं सिद्रा मुस्कान बेटा कराची में गर्मी बहुत है, मैं कल बाहर लगा के गया था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो पसीना आया थोड़ी थोड़ा एसी कार में भी। अरे भाई दिन में नहीं लगाए ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, रात को लगा के सो जाया करें चाचा।

अच्छा इरम हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहती हूं मुझे प्यारी दिलबर दोस्त, अब आपकी तबीयत कैसी है? मां ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कहां बुधा की आयो? हबीबुल्लाह थेबू कहते सॉन्ग बुधराए शमरी मिराली जो हुस्न में तू जोरा मानू तू मोरवा अल्लाह बुधराया थी बुधराया झंडो मरी खां मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम मंजूर अली खास के लिए, गुलाम खान मोहम्मद खास के लिए, हाजी जान मोहम्मद खास के लिए, कुर्बान खास के लिए, भांजो मोहब्बतों बाबा तांके चौदह भली करी आया, शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी कुनैन जहरा आपका शो सुन रहे हैं, शो जबरदस्त है, अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को और सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुम आमीन जवाब है। ओके गोठ गुलाब लगारी खान, साबिर लगारी, सुल्तान लगारी, रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम, शो नाइस है, प्लीज प्ले समीना गुडी। मां कोशिश कयां थी तांजो पसंद जो फरमाइशूं सब हलायूं, पर प्रोग्राम नंढड़ो आहे, प्रोग्राम इजाज़त ना आहे ॾींदो। अच्छा गोठ मामन तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू कहते आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको, वालेकुम अस्सलाम आपको, मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं। अच्छा हमारे साथ ही भाईजान कहते हैं आपके सवाल का जवाब इंडिया है, और आतिफ का गाना, ये जो आपने गाना बोला है ना, ये सरासर टी सीरीज का गाना है, तो हम टी सीरीज का इंडियन गाना बोलते मेरे को लगता है कोई क्राइम के लिए बोल दिया है आपने, तो ये जरा इंडियन गाने नहीं लगा सकते हम। और बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे जयपाल भाई, कहते हैं कि गुलाम की मयार भी अजीब होती है, शरीफ को बेवकूफ, मकार को चालाक, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं। नाइस भाऊ, बिल्कुल भाऊ आपने तो नाइस ही बात कर दी, बहुत बढ़िया।

असांखे नख पीलीलो ईअं न आशिक असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे ऐं बिल्कुलु बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे खपंदी जॾहिं तव्हां वेंदो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां मालूमात वठो मिले थी कोन मिले थी अवेलेबल करायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो बाबा पोइ सफ़ाई हर को तव्हांजी तारीफ़ कंदो हर को तव्हां ते आशिक थी पवंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी अचां थी काॾे न वञो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30.
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद एंड मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359212
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

हाँ जी, क्या ही बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं। और ये गाना हबीबुल्लाह थे वो भाई जान की चॉइस के ऊपर हम एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये गाना उन लोगों को डेडिकेट जाता है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद कनू बाबा, अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर रहे था, ये गानों तुम जिलाए थे, एंजॉय कियो।

हाँ जी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपके मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ हम आ चुके हैं जी प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो तमाम तरह सुनने वाले समातों को वेलकम। और साथ ही साथ जनाब, मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए कि दुनिया भर में कौन सा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। तो जो टी लवर्स हैं उनको तो मेरे ख्याल में पता होगा, बाकी सारे लोगों को पता है, सबको पता है। हाँ जी, तो ऐसा है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप इसलिए करेंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए जरूरी है। कई मरतबा हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में कर लेते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम फिर भी वो चीजें कर रहे होते हैं। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इससे तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे वाले फायदे पहुंचने वाले हैं। सबसे पहली बात, वो आपके चेहरे पर जो है ना वो इतना अच्छा प्यारा निखार आएगा, आपके चेहरे के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, फ्रेकल्स हो, क्रिकल्स हो, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती है। आपके चेहरे की स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, शाइनी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है और जनाब बेदाग इन प्यारी प्यारी हो जाती है। तो सॉफ्टली और मॉइस्चराइज अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन होनी चाहिए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये भी चीज है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जो लोग ये चीजें सोचते हैं कि भाई हम तो नहीं लगा पाते, हमारी स्किन तो बड़ी सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मेडिकेटेड फार्मूला है, 100% गारंटी के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हर स्किन के ऊपर। और मर्द हजरात लगा सकते हैं, खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। और जनाब इसके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है। तो पूरे पाकिस्तान में यानी कि जेतरो हेडो सारो सानो वडो पाकिस्तान है ना, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 प्रोडक्ट आए जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन जो एडिशन कई वही है उनके अंदर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो वो प्रोडक्ट है जो तमाम प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट है, आई तमाम जबरदस्त आई निरालो प्रोडक्ट है, आई सफा खास प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो आपके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है तो आप जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी, ये एक नाइट क्रीम है और साथ ही साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रात के टाइम लगाकर सो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप रोजमर्रा अपनी ब्यूटी के रूटीन में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कर सकते हैं। इसका खूबसूरत सा एहसास आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का फेस वॉश तो भाई क्या ही कहने, चुम्मेश्वरी प्रोडक्ट है। और साथ साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है, आपकी स्किन हमेशा जो है वो क्लीन रहती है, ग्लो करती रहती है। तो अगर आप मर्द हजरात हैं, अगर आप खवातीन हैं, सारे लोग ही लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से नंबर्स के ऊपर राता कीजिएगा। और नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर्स है जनाब 0332738-4309, बड़ी 3383-84-93, नंबर आहे 03-12-50-25-907, बड़ी 312-50-907। ये नंबर डायल कयो, नंबर ते तव्हां कॉल बि कयो या वरी मैसेज कयो त हुननि खे ॿुधायो त तव्हांखे किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल खपे, जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थिए ऐं तव्हांखे काॾे शहर न वञिणो पवे, तव्हांखे काॾे सिटी न वञिणो पवे, तव्हां बसि पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं ईज़ीली आसानी सां वञी परचेज़ कयो ऐं इस्तेमालु कयो।

0: अच्छा जॾहिं के इंसान मां एहसासात ई ख़तम थी वञनि त पोइ तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था उहो इंसान मतिलबु कीअं थी वेंदो, छो त हुनजे अंदरि एहसासात ई न हूंदा. इंसान मतिलबु मूंखे लॻंदो आहे हिकिड़ो इंसान मुकमल इंसान हुआ जंहिंजे अंदरि एहसासात हुजनि. तव्हांजी अगरि आस पास कोई रहे थो, कोई तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, त तव्हांखे उन माण्हू जो अहसास हुजे. ऐं जॾहिं तव्हां इंसान जे अंदरि एहसासात ई ख़तम थी वेंदा त मूंखे लॻंदो आहे उहो इंसान ई न आहे. एहसास कंदा कयो बाबा, एहसास पंहिंजे अंदरि जेको आहे न उहो ज़िंदा रखो, छो त हिकु इंसान जे अंदरि एहसास जो हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे. ऐं हिन खां अलावा इरम तव्हां चओ था आपी आपकी, भाई ये कल परसों भी शायद आपने मैसेज किया था, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्यों कह रही हैं. मतलब जो तव्हांखे का डिस्टर्बेंस आहे, का मुश्किल आहे, मूंखे ॿुधाए ज़रा. आप क्यों वेट कर रही हैं, छो ये हथ धोई पोयां पई? जीअण ॾे मूंखे, जीअण ॾे. Okay, so Fazila hamare sath maujood hai. Waalaikum assalam, kehti hain. Good afternoon my sweet based RJ Shehzadi Sidra, sister Muskan, kaisi ho pyari? Main bahut achhi, tum batao kaisi ho? Kehti salam to my sweet heart mom in kainat aur sab sweet sisters ko. Okay.
1: Kya sazare jo din kando.
0: Acha hamare sath hain ji. Jahan galti nahi wahan jhukna nahi, aur jahan izzat nahi wahan rukna nahi. Jaypal bhai hamare sath hai, daadho bhalo tahan शेर चयो आहे. मंजूर अली खास केली है, चाचा खालिद को शादी मुबारक झंडो मरी खां. हलड़ी हलड़ी मुबारकूं अचनि थियूं. अच्छा ये मौजूद है.
1: हारे
0: ओके जी, चाचा खालिद हमें सुन रहे हैं और कहते हैं, अच्छा टॉपिक का जवाब दिया है. गाना मैं देखती हूँ, मिल गया तो लगाते, नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे. ठीक है, वैसे भी आपने ओएसटी की फरमाइश कर दी है. अल्ताफ जाग जानी चाचू हमारे साथ कहते हैं, प्लीज मिले बरकत अली, वफा किथे न रहिया, वफा तलाश न कर. ये भी ना, ये भी ना है. डेडिकेट बिस्मिल अजरा खोसो एंड मी, सो थैंक यू चाचू. हबीबुला थेबू तव्हां घणा मैसेज कया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खुटनी कोन था, हिकड़े सिर्फ गाने जी फरमाइश. एॾा 12 मैसेज रुगो हिन हिकिड़ी गाने जे लाइ हुया. अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि मास्टर फतेह का कोई अच्छा वाला गाना लगायो भाऊ. मास्टर फतेह केड़ो छो त इलाही रात फतेह या मास्टर फतेह, इन्हनि में थोरो कंफ्यूज थी वियमि. तव्हां कंफ्यूजन दूर कयो, कंहिंजो गानो ॿुधण चाहियो था? मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ हैं. भाई जी ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए. अच्छा जेन की च्वाइस पर हमने ये वाला गाना लगाया है. फरमाइश कर रही थी गुलाम बादशाह सुंदरी के ओएसटी की, तो आइए जरा सुनते हैं.

दर्दे दिल, दर्दे दिल, थांबा थांबा, रुको रुको। चाचा खालिद को वो मुबारकबाद दी जा रही है, ठीक है, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, ठीक है। अच्छा नहीं जी, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा। मैं जो आजकल ये ड्रामे बन रहे रोमांटिक से हीरो हीरोइन वाले, ये मुझे पसंद नहीं आ रहे। पाकिस्तानी गाने बस थोड़ी हटके, थोड़ी उनकी अगर स्टोरी हो तो वो देख लेती हूँ, वरना ये सारे ड्रामे रेगुलर लगते हैं बस मुझे। एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, एक अमीर होगा, लड़की गरीब होगी, ये क्या है, सो बोरिंग।

0: जी जी और जो ये फहीम भाई आपने जो फेस्टिवल हुआ था कल परसों शायद उसके बारे में पूछ रहे हैं तो नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में, नहीं जाती मैं।
1: भला तुमसे दगा क्यों करते।
0: अच्छा अली रजा लगारी भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मधोश भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। मुजाहिद मलिक कहते हैं मानो बिल्ली मेरा कमेंट कहाँ गया, पढ़ा नहीं। पढ़ा भाई पढ़ा, जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कमेंट्स को इग्नोर कर दूं। अच्छा हमारे साथ ही यहाँ पर अब्दुल हफीज थेबू कहते आंसर दिया है आपने बढ़िया। कहते अनुषा बतूल कहाँ है, वो अपने घर है, अपने घर। किशोर भाई कहते हाँ सब जागना मुखे याद न थो करी, मुखे याद न थो करी। यही तो है ना, ऐसा ही तो होता है। आप बोले हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर मत कीजिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और ऐसा कहते हैं रुगो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो पुछन दिया ही तो तांगा छा पुछा तो खीर जो किलो घणी आ है, खंड जो किलो घणी आ है, ये गाली पूछो। जो मेरे काम की बातें मैं वही पूछूंगी ना।

हजार भाई बिल्कुल आप पूछिए, जिससे मर्जी पूछिए, ये भी पूछिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना फायदा है, आपको अच्छे से बता देंगे। मोहम्मद जमान भाई कहते हैं कि शो अलाई सुठो आ बुआ जी, भले कोई लिख रहा है वठे एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम VIP आए बुआ जी, भले कोई। अच्छा चे तो भले कोई असानो चेहरो भेटाए दिसे, वाह वाह वाह, वाजी शायरी, वाजी शायरी हुई, सफा मेला लूट लिया आपने तो। और न खा अलावा ही असानी प्रोग्राम जो लास्ट वीक आहे आई बी हिकड़ी गाल तां के बुधाई नहीं अला त अलाई छा हो बस।

बस्कर। हाँ जी बस्कर बस्कर आइडी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर कर आइडी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कौन पिया क्यों तो बाबा करे बैठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल ताने खूबसूरती जला डाडो फायदेमंद है आइडी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा के नथी मिले तो तवा के जो नंबर बुधाया थे प्रोग्राम में उन जरूर रातो करे बैठे ना कयो जे तवा जे करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आइडी स्किन फेस वॉश अवेलेबल थी वने ठीक का अच्छा अब्दुल हफीज सेबू भाई हमें 5 साल के बाद सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम कहते हैं वापसी आने पर अच्छा दर्दे दिल कहती हैं कि सब मासूम हैं पर मैं कुछ ज्यादा ही मासूम हूँ निदड़ी को शायद आप भूल रही हैं वो और ज्यादा मासूम है अच्छा हजार भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है अच्छा शमन अली हमारे साथ ही कहते हैं हेलो जी शमन अली भाई कहते हैं कि तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं इश्क की फितरत है बेवजह होना अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अरशद मरी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम

सालिम मरी भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, वेलकम वेलकम। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, तो आप लोगों से इजाजत लेंगे जनाब। और आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में अगर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो लाजमी करके देखिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम एॾी भली क्रीम आखिर छो आहे। छो त तव्हांजे चेहरे जा सभु प्रॉब्लम दूर थी वेंदा, तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी, तव्हां सफ़ाई चमकंदा वधंदा, माण्हू तव्हां खां पुछंदा बाबा छा इहो राज़ आहे तव्हांजे ख़ूबसूरती जो, ऐं तव्हां ॿुधायो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे हर जॻह ते आराम सां मिली वेंदी। ऐं हुन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾो गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करणो आहे। डी स्किन जो फेस वॉश बि लॻायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो, ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। फज़ली कहती आप भी, हांजी बहुत शुक्रिया, आप भी ख़ुशि रही, सभु ख़ुशि रही, ख़ुशि रही। और इसी के साथ साथ लेते हैं जी इजाजत। बहर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में एक कॉमेंट किया, लास्ट में एक कॉमेंट किया, मतलब पता चला कि आपने पूरा प्रोग्राम सुना। थैंक यू वेरी मच। और आज के प्रोग्राम का जो सवाल था उसका जवाब तुर्की था, तुर्की, ठीक है। और इसी के साथ वरी तव्हां सां मिलूं था जी 5 बजे वारे प्रोग्राम में। पंहिंजो ओ हीरो सर्वो ख़्याल रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जेको फीडबैक रहिजी वियो, को गानड़ो शानड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अला हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आर्डर भरसा HR ड्रोन्स को हार्ट भरसा जाबलू लाकर में किराया गया. बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जी चौकी ते हमले जी कोशिश नाकाम. नव दहशतगर्द मारजी वया. सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद दहशतगर्दन किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज ते हमले जी कोशिश कई. फोर्सेज जी कार्रवाई में ब दहशतगर्द थले ते ही मारिया वया. सत दहशतगर्दन के पीछो करे जनम भेड़ो कयो वयो. उनखा अग सिक्योरिटी फोर्सेज जी तुर्बत में कार्रवाई में ब दहशतगर्द मारजी वया. पाक फौज कुरम सेक्टर मां फितना खारजन मुल्क में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम. बणाए छॾी अफगान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया. सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई. सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो. लाड़काणे में हथियारबंदन जी कार ते फायरिंग. बिन भाइरन सूदो चार जणा कतल. लाहौरी बाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार ते फायरिंग करे ज़मीनी तकरार तां चइनि जणनि खे कतल कयो. पुलिस मूजिब फायरिंग में अलाव रहियो ऐं संदसि भाउ मंसूर खोखर अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर मारिजी विया. हिकु औरत ज़ख़्मी थी आहे. वारसनि जो चवणु आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हू ज़मीनी तकरार तां चइनि जणनि खे कतल कयो आहे. SSP लाड़काणे जो चवण आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि. वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस IG सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती. जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम.

न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात, पोलियो जे खात्मे, माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमिल खात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वज़ीर-ए-आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो खात्मे लाइ कोशिशनि जी वाखाण कई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार पारां वलारियल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जी मज़म्मत। इसहाक़दार चयो त वलारियल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे। आलमी बिरादरीअ सलामती काउंसिल कश्मीरनि सां कयल वाइदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि जे ग्रुपनि ते ॻणती आहे। अफ़गान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमाल न थियण ॾिनी वञे। पाकिस्तान सऊदी अरब सां खुदमुख्तियारी सलामती ऐं मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौके ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था। हुरमिन शरीफ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो समूरी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां अमेरिकी सफ़ीर नैट बेकर जी मुलाक़ात। इलाक़ाई सिक्योरिटी जे मामलनि ते पाकिस्तान जे अमन कोशिशनि बाबति ॻाल्हियूं कयूं। पाक अमेरिका लाॻापनि खे हथी ॾियण ऐं सीड़पकारी जे मौक़नि जे इम्काननि ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दुनिया दहशतगर्दी विच में पाकिस्तान मज़बूत भित बणियल आहे। अमेरिकी सफ़ीर नैट पारां बेकर दहशतगर्दी ख़िलाफ़ पाकिस्तान जे क़ुर्बानीनि जी वाखाण कई।

वले वजीर सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरगियाती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात तालीम ट्रांसपोर्ट सेहत बहराड़न की तरक्की ए डिजिटल मनसूबन के ख्याल की डेवट कई वही वले वजीर सैयद मुराद अली शाह दरबार के महफूज जदीद ए मयारी तालीमी सहूलतू फराहम करो अजम है। सिंध हुकूमत एशियाई तरकियाती बैंक से भहवारी मजबूत बनाईंदी।

0: वजीर रजा केस जे अदालती कमीशन जी गुजरेली वारी कार्रवाई जो लिखत में हुक्मनामो जारी सेक्रेटरी सेहत सिंध एसएसपी समीउल्लाह सुंगरो ऐं पीओ सी कोऑर्डिनेटर शहरयार मेमण खे नोटिस जारी डीएसपी सिराज अहमद लाशारी ऐं सीपीएलसी जे काशिफ इफ्तिखार खे 28 सितंबर ते पेश थियण जो हुकुम अदालती कमीशन बार बार खातिरियूं कराइण बावजूद समूरो रिकॉर्ड फराम न करण ते अफ़सोस जो इज़हार कयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापडा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण ना पहिरियों कदम वधायो।
3: असली चीजां चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोर जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोर सेहतमंद। जी जान चारो मसालो,
4: जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-310-5109,
7: 03000-510-5109। इरशाद ऑटोस शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
8: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए।

0: दिन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: लाड़काने में हथियारबंदन की कार से फायरिंग में बारह सूदों चार जना कतल लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार तां तीन जणन के कतल कयो पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो ए संदस भाव मंसूर खोखर अली शेर खोखर ए कार ड्राइवर मारजी वया एक औरत जख्मी थी है वारसन जो चवण है पैंजे ही बिरादरी के मान जमीनी तकरार तां तीन जणन के कतल कयो है एसएसपी लाड़काणो जो चवण है कई धुरियूं पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस आहे जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो

0: पाकिस्तान सऊदी अरब से खुदमुख्तियारी सलामती मुकदस संदन के तहफुज लाए गड है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कौमी डी के मौके से चयो तो हुसैन के मके से हमले की मज़म्मत क्यों था। हुरमिन शरीफ की सलामती के को भी खतरो समूरी दुनिया के मुसलमान के जज्बन के चियो रसाए तो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफीर नेडी बेकर की मुलाकात। इलाकई सिक्योरिटी के मामलों से पाकिस्तान के अमन कोशिशों बाबत गालू थी। पाक अमेरिका लागापन के हथी डेण सीड़पकारी के मौक के इम्कान ख्याल की डेवत कई वही। मोहसिन नकवी दुनिया दहशतगर्दी विच में पाकिस्तान मजबूत भित बनल है। अमेरिकी सफीर नेडी पारा बेकर दहशतगर्दी खिलाफ पाकिस्तान के कुर्बान की वाखाण कई। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तालीम ट्रांसपोर्ट सेहत बहराड़ी के तरक्की ए डिजिटल मनसूबन के ख्याल की डेवट कई वही। वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह है हर बार के महफूज जदीद मयारी तालीमी सहूलतू फराम करण जो अज़म है। सिंध हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से वहवारी मजबूत बनाईंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: घर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000-3385-69।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
2: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
1: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध अजी वठी अच।
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: हा साईं हा।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: धार माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देव निवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुंशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जकच हम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
6: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
7: आंगन जी तू कयो गद्दी गुजारूंगा। السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
9: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
9: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
1: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

बाकी वजीर अल्ला तला मन के कूड़े बयान पोया लगाए जहन साजी कई वही जदे मईश तरक्की कर लगती है तो ये धरना एहतजाज कर शुरू कन्दा पीटीआई केपी में भी को कम न किया है। पीटीआई 13 साल में केपी के तबाह कर छो पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है तो असा चाहूं था मार्च पुरमन थे हुकूमती टोलो प्रोपेगेंडा तो करे असा इदारन ते हमला कंदासी असा गालियन जे हक में आयो खबर आए तो कें सा गलान घुर्जे पर गालियों न पयू थियन सियासी मसलन जो हल गालियन जरिए निकरंदो। पीटीआई क्यादत महमूद खान अचकज़ई अलामा राजा नासिर अब्बास गालियन लिया तैयार आहिनि।

खुर्रम सेक्टर मां फितनतुल खारिजीन मुल्क में दाखिल थियण की कोशिश नाकाम बणाए छदी। अफगान तालिबान पोस्टू छदे फरार थी विया। सिक्योरिटी जरिये मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियों ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई दुश्मन के भजन से मजबूर कर।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-33-85-69।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372-02-42-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
2: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत आशिक होंडा मोटर्स ते। पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼु कल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: में सूरत हाल खराब आहे केपी हुकूमत जा जिम्मेवार वरी टिकटॉक ठाहिण में रुधल आहिनि वफ़ा खां पैसा न मिलण जो तासुर बि ग़लति आहे केपी हुकूमत 13 सालनि में को बि कमु नाहे कयो ऐं सूबे खे तबाहीअ ते पहुचाए छॾियो आहे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असीं चाहियूं था त मार्च बि थिए ऐं उहो पुरमुन बि हुजे हिकु हुकूमती जथो प्रोपेगेंडा करे रहियो आहे त असां हुकूमत जे इदारनि ते हमिलो करण वञी रहिया आहियूं जेको हुकूमती टोलो बयानियो ठाहे रहियो आहे हुन जो बंदोबस्तु करणो पवंदो इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त असांखे ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हि करणी आहे मसलनि जो सियासी हल ॻोल्हणो पवंदो कुझु माण्हू सियासी मसलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि लेवी जो पेट्रोलियम क़ीमत सां को वास्तो न आहे हुनजी खात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जदोजहद जारी आहे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पेट्रोल सस्तो न थियो त मैशियत तबाह थी वेंदी लेवी जी खात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़ुनि ते अञा ताईं को जवाबु न आहे ॾिनो लाड़काणे में कार मथां हथियारबंदनि जी फायरिंग ॿिनि भाइरनि समेत चार ॼणा क़तल लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि कार ते फायरिंग करे ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो पुलिस मूजिबि फायरिंग में अलाह वरायो ऐं संदसि भाउ मंसूर खोखर अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर ग़ुलाम मोहिब मङणे जो मारिजी विया हिकु औरत ज़ख़्मी वारसनि जो चवणु आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो SSP लाड़काणे जो चवणु आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजे बिरादरी जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि वरी वज़ीर मुराद अली शाह पारां वाक़िए जो नोटिस IG सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान रिजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया अफ़गान तालिबान रिजीम तरफ़ां 8 ड्रोन पाकिस्तान जे फिज़ाई हदनि में दाख़िल थिया सेक्रेटरी ज़रीन मूजिबि पाक फ़ौज जी एयर डिफेंस सिस्टम ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में अफ़गानिस्तान खां आयल 8 ड्रोन खे किराए तबाह करे छॾियो अफ़गान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी बुज़दिलाणी कोशिश कई 4 ड्रोन तोखम बार्डर भरिसां ऐं 4 ड्रोन कोहाट भरिसां जाबुल इलाइक़नि में किराया विया
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109
5: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अम्हां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
6: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।

0: जेको आहे सो रिलीफ मिली वेंदो आहे, फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। कारा मिर्च जेकॾहिं तव्हां जेको आहे सो रखंदो त उन सां बि गलो जंहिंजो बंदि हूंदो आहे उहो गलो बि जेको आहे सो खुली वेंदो आहे। सो अहिड़ियूं कुदरती तमामु घणियूं शयूं आहिनि। पान जी जड़ आहे उहा बि जेको आहे सो खाइण सां काफ़ी फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। लेकिन इहे सभु शयूं जेकॾहिं तव्हां कंहिं ॼाणू डॉक्टर सां बि मुलाक़ात करे इस्तेमालु करे सघो था, जे तव्हां वठंदो हुतां बि। लेकिन आफ्टरऑल मां इहा ई ॻाल्हि कंदो आहियां त ही हिकु फस्ट एड जिते तव्हांखे ॿुधायो वेंदो आहे न, जेकॾहिं तव्हां किथे वञो था त फ़िलहालु फस्ट एड तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहे। त हीअ हिकिड़ी क़िस्म जी फस्ट एड हूंदी आहे, ट्रीटमेंट तव्हांजी दवा आहे, होम्योपैथिक दवा आहे जंहिंजो को साइड इफ़ेक्ट नाहे। ऐं ॾिसो एॾा वॾा मर्ज़ एॾी वॾी सीरियस कंडीशन में तव्हांखे बग़ैर ऑपरेशन जे हुजो, तव्हां गलो चीरायो, नकु जेको आहे सो कटरायो, यानी हिकिड़ा ऑपरेशन करायो, त उन्हनि खां जेकॾहिं तव्हां कुदरती शयूं इस्तेमालु कंदो। लेकिन असां वटि जल्दबाज़ी तमामु घणी आहे, पैसो घणो आहे, असां तकड़ि में पहिरां सुयूं हणाईंदासीं छो जो असांखे सुयुनि जी आदत पियल आहे। जेसि ताईं इंजेक्शन न लॻंदी आहे तेसि ताईं फ़र्क़ु न पवंदो आहे। इन जे करे जेको आहे सो ऐं सर्जरी ते वञी पहुचंदा आहियूं, लेकिन उहे वरी बाद में जेको आहे सो साॻियूं असांखे डबल कराइणी हूंदियूं आहिनि। इन जे करे जल्दबाज़ी न करणु घुरिजे। ऐं अवां होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिन कराई आहे उन्हनि खे ख़बर आहे, जिन न कराई आहे त हिकु दफ़ो ज़रूरु कराए ॾिसनि। वॾी महिरबानी
1: डॉक्टर साहब, तमामु घणी महिरबानी, तव्हां हिकु बहितरीन ॼाण ॾिनी सर। डॉक्टर साहब, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कंदा आहिनि। संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुॾ रंग जो सूरु, नक, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। ऐं असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851।

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर अव सभी बुधंदड़ के खुश आमदी चूं था। प्रोग्राम आए सेहत की गाल अवे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असान लाइव कॉल जो नंबर है 0301-91-8051। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 11 to 5 PM तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा हैं। अंगारे जे डी डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंद होंदी है। इन में हफ्ते जा 3 जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंदी है। बाकी दवा मरीज के स्टोर तां वठणी होंदी है।

0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਪੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਲੰਦਾ ਸੀ
1: ਜੀ।
0: ਲਗੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਬੀ ਕਾਲ ਜੀ ਤਰਫ ਹਲੰਦਾਸੀ ਦਿਸਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ।
0: ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਥਾਂ ਖਾਦਾ?
2: ਹਾਂ ਮਾ ਮਜਾ ਸਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗੁੱਟ ਕਾਲੇ ਸਰ ਤੇ ਕਾ ਮੋਜੀ ਘਰਵਾਰੀ ਜਾ ਵਾਤੂ ਡਾਡੋ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਪਏ ਆਏ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵੇਜੋ ਆਏ ਤੁਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰ
2: ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੋ ਜੇ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੀ
0: ਮਸ਼ਵਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਾ ਕੇ ਬੁਦਾਇ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਰੂਬਰੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਧੇਕ ਬਿਹਤਰ
2: ਮਿਹਰਬਾਨੀ
3: ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ ਕੇ ਬਦੇ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਗਾੜੋ ਮਿਰਚ ਤਰੇ ਤਰਲ ਸ਼ੇ ਖਟੀ ਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸ਼ੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਕਰੇ ਸ਼ੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਂ ਪੋ ਦਹੀ ਮੇ ਜੇਕੋ ਐਸੋ ਕੇਲੋ ਮਿਲਾਏ ਉਹਨਜੋ ਲੇਪ ਜੇਕੋ ਐਸੋ ਯਾਨੀ ਵਾਤ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੋ ਪਵੰਦੋ ਆਏ ਉਹ ਸਾਂ ਇਸਪੰਗੁਰ ਜੀ ਦੁਹੀ ਅਵਾਂਖੇ ਫਸਟ ਏਡ ਜੇਕੋ ਐਸੋ ਦੇਈ ਸਕੇ ਤੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦੋ ਆਏ ऐं उन खां पोइ जेके जीअं थधी शयूं इस्तेमालु करण जे लाइ पपीते जो इस्तेमालु तमामु हिकिड़ो बहितरु हूंदो आहे ऐं उनजो जेके यानी छाला पइजी वेंदा आहिनि वातनि में या जेको वात पची पवंदो आहे त उन में जेको आहे सो पपीतो तमामु जेको आहे सो मुफ़ीद हूंदो आहे ऐं काफ़ी फ़ाइदो उन सां पवंदो आहे। स्पंगुर जी दुही उन मूंखे काफ़ी फ़ाइदो ॾींदी आहे। खीर जो इस्तेमालु काफ़ी फ़ाइदे में हूंदो आहे ऐं उनखां अलावा होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट हुनजी बहितरु हूंदी आहे। जेकॾहिं फस्ट एड वठनि ऐं परहेज़ करनि इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पइजी ईंदो, न पए फ़र्क़ु त पोइ बिल्कुलु ॾेखारे सघंदो।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम अलैकुम।
2: अस्सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: अदा मां कोटड़ी खाली ना जवाब को ॻाल्हायां
0: जी। अदा छा पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
2: यार मुंहिंजी घर वारी खे हा में सूर थो पए, माना रोज पासो परेशान
0: आहे। अच्छा।
3: बिल्कुल ॿारनि जे लाइ इहो ॿुधाईंदासीं जिन जो हया में सूर पवे थो त हिकु त जेको आहे सो सौंफ़ तमामु बहितर आहिनि। हर खाधे खां बाद में सौंफ़ ज़रूरु चूसिन, सौंफ़ काफ़ी फ़ाइदो ॾींदा आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो सौंफ़ ऐं जीरो इन जो जेको आहे सो पाणी में काढ़े अधु चमची ऐं उहो काढ़ो पीअंदा, उहो बि काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो ॾींदा। उनखां पोइ ॾिसूं त उहा छाजे करे तकलीफ़ थिए थी, का कहिड़ी शइ खाइण में तकलीफ़ ज़्यादा थिए थी त उहा शइ बिल्कुलु जीअं मिसाल तरियल शइ आहे, चांहि जो इस्तेमालु घणो आहे, उहे साॻी जी मां ॻाल्हि ॿुधाई त जेके हैवी शयूं माण्हू खाईंदा आहिनि या ॻाढ़ो मिर्च या चांहि जो इस्तेमालु ज़्यादा या देग जो चांवर त उहे शयूं जेको आहे सो बिल्कुलु इस्तेमालु करण जेको आहे सो बिल्कुलु बंदि करे छॾियो ऐं उन में दवा जेको आहे सो होम्योपैथिक जी बहितर ट्रीट कंदी आहे। जेकॾहिं फ़र्क़ु न पए त बिल्कुलु ॾेखारे वञे। नंढो ॿार जो मथो पची पियो आहे या मलो आहे त हिकु त जेको आहे निम जा पन पाणी में काढ़े उन निम जे पाणीअ सां ऐं विंझाण सां जो निम बि तमामु हिकिड़ी एंटी बैक्टेरियल आहे, एंटीबायोटिक आहे, एंटी इंफ्लेमेशन आहे ऐं उहा काफ़ी जेकी आहे सो इहे सभु नाला जेके अव्हांखे ॿुधायासीं मेडिकेटेड नाला हूंदा आहिनि जेके अव्हांजे जी मिसाल तव्हां ॾिसो डिटोल इस्तेमालु कंदा आहियो त हीअ यानी डिटोल खां कई गुना वधीक इन जा फ़ाइदा हूंदा आहिनि। हीअ हिकिड़ी ख़ालिसतन जड़ी बूटी आहे, अलाह ताला हिन खे जेको आहे सो तख़लीक़ कयो आहे, हिन में केमिकल न आहे ऐं हिन जे ज़्यादातर इस्तेमालु करण सां जेकी बि जरासीम आहिनि ख़तमु, पाच बि ख़तमु थी वेंदी आहे। इस्तेमालु करे सघो था एज़ अ फस्ट एड, एज़ अ ट्रीटमेंट तव्हां रूबरू ॾेखारे सघो था। वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। अञा वा असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8151। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। ऐं में हफ़्ते जा टे ॾींहं जुमो छंछरु आचरु चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु कुनरक जो सूरु नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहणु कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघि टीबी मैदे जो सूरु मैदे जी अल्सर तिली जो वधणु जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। हाणे असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301 91 8051।

0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे।
1: दवाऊं मरीज़ खे वठणी पवंदियूं आहिनि,
0: बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तव्हां वठणी पवंदी आहे।

डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघि टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि।

0: असांजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए बि शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851।
1: अॼु बिल्कुलु के दोस्त हूंदा आहिनि या हाणे बि हिकिड़ा पेशंट्स उहे ॿुधाईंदा आहिनि त अव्हांजो नंबर जेको आहे सो जल्दी जल्दी में ॿुधायो वेंदो आहे, असांखे यादि न बीहंदो आहे, इन जे करे पाण खे नंबर नोट कराईंदो हलां। 0301-9196-851 यानी 0301-9196-851 अव्हां यादि कजो, नोट करे छॾियो।
0: डॉक्टर साहब हिकु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
2: साईं। साईं वालेकुम अस्सलाम।
0: प्यारा भाउ कहिड़ा हालु? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे?
2: अलहमदुलिल्लाह। तव्हां ॿुधायो साईं, कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो?
0: शुक्र आहे अलहमदुलिल्लाह। छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां? ऐं असांजो प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? जी जी सर, असांजो प्रोग्राम कीअं पियो लॻे सर? फीडबैक ज़रूरु ॾींदा।
2: प्रोग्राम माशाल्लाह वेरी नाइस तव्हांजो हले पियो, ॾाढो तमामु घणो बहितरीन सुठो आहे। नशियात बि वीआई ते अचे पई ऐं अव्हांजो प्रोग्राम बि वंडरफुल, जेतिरी तारीफ़ ते सां घटि आहे।
0: मोहबतूं साईं, मोहबतूं आहिनि,
1: इहो सभु कुझु अदा, वॾी महिरबानी तव्हांजी, इहो सभु कुझु तव्हांजे ॿुधण सां ई जेको आहे
2: सर। इहो माना असां डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त असां अलहमदुला हू बहितर आहियूं, सही आहियूं, सिहतमंद आहियूं, खाइण पीअण बहितर
0: आहे,
2: पर आउं जॾहिं सुबुह जो 4 बजे निमाज़ लाइ उथंदो आहियां त उन वक़्तु मूंखे बेचैनी ऐं थोरो माना कमज़ोरी महसूसु थींदी आहे। इहो छा कारण आहे साईं, जॾहिं असांखे ॾिसो?
0: बिल्कुलु डॉक्टर साहब अव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो।
1: शुगर त न आहे साईं तव्हांखे?
0: शुगर त न आहे डॉक्टर साहब पुछे पियो?
2: न बिल्कुलु शुगर, बीपी सभु कुझु ओके आहे, को मसलो न आहे, कुझु बि न आहे, भली इहो थोरो इशू आहे।
0: उमिरि घणी आहे?
2: वेहूं था 5 मिंट खट ते, पोइ सही थी था वञो, वरी घुमो फिरो, उथण सां असांखे मसला पैदा थियनि।
0: सही सही। उमिरि घणी आहे दा?
2: उमिरि 45 ईयर साईं।
0: अच्छा, ठीकु आहे सर, ठीकु आहे। ॿुधाए थो डॉक्टर साहब,
2: अञा नौजवान आहियूं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: हा बिल्कुलु, जेको असां दिलि जवान आहे हूंदी आहे ऐं माण्हू केतिरो बि उमिरि जो थियो आहे, उहो बि 45 साल उमिरि जेको आहे सो बिल्कुलु नॉर्मल
0: हूंदी
1: आहे। अॼु खे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त हिकु त सुठी ॻाल्हि आहे इन टाइम ते जेको आहे सो उथणु, अलाह ताला खे ज़रूरु यादि कंदा कयो, तजुद जो टाइम आहे, तजुद पढ़ंदा कयो, वज़ू में रहंदा कयो, इनशा ताला अव्हांखे काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो। दिलि खे सुकून ॾियण जे लाइ हिकु त दुरूद शरीफ़ तमामु जेको आहे सो उन खां वधीक का शइ न आहे। अव्हां दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा अव्हांखे दिलि खे सुकून मिली वेंदो, सूरह रहमान अव्हां ॿुधंदा अव्हांखे सुकून अची वेंदो। ऐं अचूं था ट्रीटमेंट जी तरफ़, त अव्हांखे हिकिड़ो नंढो नुस्ख़ो ॿुधाए छॾियो, काफ़ी अव्हांखे दिलि खे सुकून सां सुकून बि मिलंदो ऐं फ़रहत बि थींदी ऐं चकर बि अव्हांजा ख़तमु थी वेंदा। हिकु त बादाम मिसरी ऐं सौंफ, बादाम मिसरी सौंफ अधु भाव वठी करे सफ़ूफ़ करे चमची हिकिड़ी सुबुह जो, चमची शाम जो ज़रूरु जेको आहे सो खाईंदा कयो, उहा अव्हांजे लाइ काफ़ी बहितरु आहे। जेकॾहिं थी सघे त माखी किथां हथु थी वञे त रोज़ाना राति जो हिकिड़ो चमच माखी जो खीर में मिलाए ऐं उहो इस्तेमालु कयो, उन सां बि अव्हांखे, या वरी खजूर अव्हांखे आसानी सां मिली वञनि थियूं, 5 दाणा खजूर जा खीर में ग्राइंड करे, ऐं जेकॾहिं माखी बि विझो त ठीकु आहे, वरना सिर्फ़ु खीर में ग्राइंड करे उहो जूस पीअंदो त उन सां बि अव्हां बिल्कुलु जेको आहे सो अञा नौजवान थी वेंदव। वॾी महिरबानी।
0: असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब ऐं प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। डॉक्टर साहब, असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण जे वञे पियो, आख़िर में अव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा सर?
1: जी साईं, वॾी महिरबानी आहे, तमामु ख़ुशी थी अॼु जेको प्रोग्राम करे दोस्तनि असांखे ख़िदमत जो मौक़ो ॾिनो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त प्रोग्राम में मां हमेशह हिकिड़ो ई मैसेज ॾींदो आहियां त माउ पीउ जी ज़रूरु ख़िदमत कंदा करियो, माउ पीउ अनमोल शइ आहिनि, अव्हांखे जेको आहे सो माउ पीउ वरी न मिलंदा, उनजे ख़िदमत जो मौक़ो जेतिरो थी सघे उनखे ख़िदमत जो, उन्हनि जो ख़िदमत कयो। ऐं उनखां अलावा सुबुह जो उन्हनि खे रुगो तव्हां प्यार भरी निगाहुनि सां ॾिसंदो त उहो बि तव्हांखे तमामु घणो सवाबु मिलंदो आहे। ऐं पीउ माउ जी ख़िदमत करण सां अव्हांखे जेको आहे सो जहिड़े जन्नत में तव्हांखे ईअं सम्झो त ॼण टिकेट मिली वेंदी आहे। वॾी महिरबानी।
0: असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान एहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़, अलाह वाही।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: गोहर चयो त असांखे ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हि करणी आहे. मसलनि जो सियासी हल ॻोल्हणो पवंदो. कुझु माण्हू सियासी मसलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि.

लेवीअ जो पेट्रोलियम को वास्तो नाहे, हुन जी ख़ात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जदोजहद जारी आहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पेट्रोल सस्तो न थियो त मैशत तबाह थी वेंदी। लेवीअ जी ख़ात्मे लाइ

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व जवाबित लागू हैं।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जा ब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: उम्मीद ते सभी दोस्त बिल्कुल खैर आफियत से पैंजे बचड़न सा गड पैंजी मामूले जी जिंदगी गुजारींदा हुंदा ऐं यकीनन असां जे प्रोग्राम जो इंतजार पिण कंदा हुंदा। GFM 94 मैरापुर ऐं मिल्क राइस ब्यूटी शो जे ॿुधंदड़नि चाहींदड़नि परस्तारनि महबूबनि दिलबरनि दोस्तनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310519।

जी दोस्तों, प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु मां आहियां आबिद चौहान ऐं अमां ॿुधी रहिया आहियो GFM 94 मेहरापुर। दोस्तों, प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं खोड़ सारा म्यूज़िकल ट्रैक्स। ऐं हुन सां गॾु कंदासीं अवां सां ॻाल्हि ॿोल कचहरी।

ऐं अॼु को न को कंहिं न कंहिं टॉपिक कंहिं ॻाल्हि ॿोल कंहिं सवाल कंहिं जवाब ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अवां सभई मोहबती आहियो ऐं पैगाम बि अवां जो मोहबतुनि जो हूंदो आहे, सो डेफिनेटली ॻाल्हि कबी मोहबत जी, अमन जी, प्यार जी, पाबोह जी, सिक जी, प्रीत जी। ॻाल्हि कबी पंहिंजनि जी, मारवाड़नि जी, महबूबनि जी, सिंध वासनि जी, मेहरापुर वारनि जी, सिंध वारनि जी। प्रोग्राम्स में लाइव कॉल्स भी वठंदासे ऐं मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट जे हवाले सां अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासे। पर प्रोग्राम जो आगाज़ प्रॉपरली असां कंदासे हिकिड़े खूबसूरत कसीदे खां, त पोइ उन खां पोइ कॉल बि अटेंड कंदासे, अवां जूं कॉल शामिल कंदासे। अचो त गॾिजी हीअ ख़ूबसूरत मनकबत कसीदो ॿुधूं, उन खां पोइ वापसि वरूं था, अवां जूं लाइव कॉल्स बि अटेंड कंदासीं ऐं अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं।

0: जी दोस्तों, तो अब वक्त हुआ जाता है आपकी फोन कॉल्स अटेंड करने का, और उसके साथ
1: मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें।
0: जी दोस्तों, वेलकम बलिकार, खुश आमदीद जी एन वशत के और पखैर रागले। तो दोस्तों, आज का कॉल अटेंड करने से पहले आज का हमारा सवाल है बहुत ही सिंपल सा, लेकिन इंटरेस्टिंग और दिलचस्प। आपके प्यारे प्यारे जवाब सुनकर हमें बेहद मज़ा आता है। वो कौन सा शहर है जिसे उल्टा पढ़ने पर किसी परिंदे का नाम बनता है। जी दोस्तों, वो कड़ो शहर है जैके ऊंधो पढ़ण सा कई पखी जो नाम थी वो आए। मिल्क राइज ब्यूटी शो मिल्क राइज जे स्पॉन्सर से पेश किया वे पे, उन्हें दावा है तो 3 दिन में अवां जे चेहरे ते ग्लो ए ताजगी अची वी, पर बशरते आसमायण जे खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। मिल्क राइज जो खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवां जे पेंचे शहर शाही बाजार मैरापुर जे तमाम वन जनरल स्टोर्स ते मौजूद आन। खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

0: ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अवां अवेलेबल करणु चाहियो था मिल्क वाइस जी प्रोडक्ट खे पंहिंजे वेझे शहर जे कंहिं जनरल स्टोर ते त उन लाइ अव्हांखे कॉल करणी पवंदी असांजे हेल्पलाइन नंबर ते। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300310510 9। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं अवां चाहियो था लाइव कॉल वसीले असां सां ॻाल्हि ॿोल करण ऐं मिल्क राइस जे एक्सपीरियंस अवां जे इस्तेमाल खां पोइ पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर करणु चाहियो था या अॼोकी जेका गुज़ारत आहे जो आज की पहली उन जो जवाबु ॾियणु चाहियो था त पोइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर मिलाईंदो। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300-93-1967। जी त असां सां गॾु कॉलर मौजूदु आहे लाइन ते, पहिरीं कॉल अटेंड कंदासीं। السلام علیکم، خیر سائیں کتھا کا؟ وعلیکم
1: السلام،
0: جی ادا
1: محبوب علی شر تھری میرا بابا،
0: محبوب علی شر تھری میرا کا ویلکم بلی کر، خوش آمدید پیارا۔
1: ہلو
0: جی جی، خوش آمدید پیارا۔ سائیں
1: کڑا حال ہو؟ خوش آیو، وڈی مشکل نا نمبر تو ملے
0: بھائی۔ ہاں ایں ہوندو ا پہرو تا کسی دو انجوائے کے ہوندو او ہلی رہو تو پو ظاہر ان وچ میں کال کون اٹینڈ کئی سے ऐं उन खां पोइ वरी मुसलसल ॿियूं कॉल्स बि हलंदियूं रहंदियूं तंहिं करे। बसि त पोइ पहिरीं ॻाल्हि तव्हांजी आहे, तव्हां जेतिरो शॉट कंदो त ॿियनि खे मौक़ो मिलंदो। जी ओके, पाण जो नालो शामिल कयो।
1: इमरान अली शर बुधी रहा था इंशाल्लाह मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम बेहतरीन आ खुशबूदार आ इस्तेमाल क्यों दादा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: आ दिन खुशबूदार आ जबरदस्त
0: लाजवाब।
1: आई जे जे की संगत बुधे दी सबनी दे सलाम आई नवाबी संगत में दोस्त दो रही हुसैन बख्श साल पा रहे।
0: हां हुसैन सलाम रहे हुसैन बख्श के हर को सुनाण तो हुसैन बख्श असा का वधिक फेमस मानु आ। वालेकुम सलाम, मिली आ वो बुधी रहे हूं तो बिल्कुल यकीनन
1: नंबर कला को न तो लगे सही ताने कानू अचन माशाल्लाह जबरदस्त ने करे नंबर लगे न तो अजी बस रिस्ला कर आयो से।
0: जी
1: लगियो कभी मेहरबानी ता आनी सही
0: गुजारत रखी से नंडड़ी इकड़ी
1: जी की हुकुम सही बुधायो न बुधी सके रे।
0: केड़ो शहर है जेके उल्टो उंधो करे पढंदा से तो कै पखिए जो नाम थी वंदो। वो केड़ो शहर आए जैंके उल्टो पढ़ने सा उंधो पढ़ने सा उंधो करे पढ़ंदा से तो वो कहीं पखिए जो नाम थी वेंदो।
1: अरे ये तो ना ब्रो आने देखो आ तो बुद्ध आना होगा लखी तो ना है सर।
0: लखी है सा केड़ो पखी थींदो।
1: अच्छा सर।
0: हां
1: यो समझ में ना तो
0: बस आने दुका दुका ब्यान हणो प्रोग्राम बुधंदा रहो एंजॉय कियो दोस्तन जा जवाब बुधंदा रहो। ठीक
1: है फरमाइश पूरी क्यों ना भैया जी
0: फरमाइश बुधायो कॉल भी ड्रिगी ता कई आ शॉट सही करे फरमाइश बुधायो।
1: फरमाइश ममताज मोलाई।
0: ठीक है ममताज मोलाई हलायो था। ओके थियो
1: मेहरबानी से अलावा थैंक यू।
0: ओके वेरी मेहरबानी। ओके थैंक यू अलावा।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में हिकड़ी बी कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम अस्सलाम, इरफान अली थेबो गुलाबी संगत दालका साले पर खबरी बिठा खां।
0: इरफान अली थेबो संगत केड़ी दा बुधायो?
1: गुलाबी संगत।
0: गुलाबी, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, नवाबी खां पो गुलाबी संगत।
1: हाँ बिल्कुल, ये बियो संगत सब पुरानी हुआ है, लेकिन गुलाबी संगत जेका सॉरी जेके बियो संगत हुआ है वो नई हुआ है, लेकिन जेका गुलाबी संगत आए तकरीबन असान दी 2023 का वजी आए।
0: अच्छा, डाडो प्यारो मुनफरिद नालो लगो।
1: नहीं जेके हाने जेके संगत हुआ है नवाबी या बियो ही आई उन 2026 में।
0: अच्छा, उनन अवा के बुधी कर रखियो है सा नालो?
1: हां बिल्कुल, वो ताने जाहिर या उन ये कयो दो, लेकिन असान के
0: आरजे
1: जी एकरे आरजे यो लकब दिनो हो,
0: आरजे अवा के लकब दिनो
1: जी।
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: वाह वाह वाह वाह, भला जी रंगत के दिसी के अच्छा ओके थी हो ठीक है मुझे वाह ठीक है। पो असा जो प्रोग्राम कदें का बुधो पया?
1: प्रोग्राम त आज नशरियात तमा जी थोड़ी घणी साले पट में अचे थी।
0: अच्छा
1: हां, बुधन प्रोग्राम शुरू कयो आ, केमल तमा जो आवाज रेडियो ते साफ अचे तो, केमल वरी स्पीकरन जो आवाज।

0: इंशाअल्लाह असां ज़रूरु ख़रीद बि कंदासीं
1: जी भाई।
0: ऐं सवाल जो जवाब असांजी नज़र में त इटली जो शहर आहे रोम।
1: अच्छा, उनखे उल्टो करण सां कहिड़ो पखी थींदो?
0: उनखे अगरि असां उल्टो लिखंदासीं त थी वेंदो मोर।
1: रोम मां थी वेंदो मोर। अवां जवाब नोट करे छॾियो आहे। प्रोग्राम पूरो ॿुधंदा रहो। इन खां अलावा बि जेकॾहिं को दोस्त जवाबु ॾियणु चाहींदो त हुनजो जवाबु बि इंजॉय कंदासीं। ठीकु
0: आहे, दोस्त छा ख़बर आहे उन्हनि जो जवाबु सही हुजे।
1: वॾी महिरबानी कुर्ब, थैंक यू।
0: ऐं सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं हुन खां पोइ फारूक थेबो, राय तुमरो, हाफिज़ गुलाम अहमद साबल, हुसैन बगीड़ो ऐं बाक़ी जेके दोस्त ॿुधंदा सभिनी खे इरफान अली थेबो बारा कुर सलाम।
1: वॾी महिरबानी, लव यू सर, थैंक यू, वालेकुम सलाम, कुर्ब,
0: लव यू टू।

0: जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु मां आहियां आबिद चौहान ऐं अवां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम 94 मेहरापुर। असां सां गॾु लाइन ते हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? केर साईं किथां खां? वसीम अबड़ो खैरपुर खां, मेहरापुर खां। वेलकम, भली कार प्यारा।
1: शालन खेरा, तबियत सेहत सही आहे?
0: A1। वसीम अबड़ो रोड़ी खां न कॉल कंदो आहे हिकिड़ो?
1: या अवां मेहरापुर खां अल्तसर जनरल स्टोर
0: ॾिनो कान करो। गुड थियो मुंहिंजा भाउ, गुड थियो।
1: ॿियो खेरा, तबियत सेहत सही
0: आहे? A1 अलाह असां नवां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो।
1: अरब जा करम, एहसान माल करम लॻा पिया आहिनि। कल खां वठी ट्राए कयोसीं, पर कल नेटवर्क हुयो ख़राब
0: जी।
1: गुलाम मुहिउद्दीन उर्फ तोती, अकरम कंबो, प्रोग्राम ॿुधंदाऊं सॼो ॾींहुं।
0: इहो तोतो त तखल्लुस, मर्दाणो तखल्लुस त तोतो हुअणु घुरिजे, तोती छो भला साईं जो?
1: असल में माना प्यार में जेको आहे न, तोतो तोतो चवणु माना मज़ो न पियो अचे, पोइ
0: ठीकु आहे, ठीकु आहे। ॾाढो प्यारो नाओ, डिफरेंट नाओ।
1: ॿियो कहिड़ा भाउ, तबियत सेहत सही आहे?
0: A1 भाउ, दुआऊं अलाह एहसान प्रोडक्ट जे हवाले सां मां खां पुछंदा रहंदा आहियूं हमेशा।
1: प्रोडक्ट जो बि मां चई आयमि दोस्त खे
0: जी,
1: शायदि आयो आहे
0: जी,
1: लेकिन हाणे मां मेहरापुर वञा त पोइ इंशाल्लाह इस्तेमालु करे वरी पोइ जेका रिज़ल्ट आई त
0: यकीन पोइ पंहिंजे जनरल स्टोर ते बि अवेलेबल कराईंदो। अवां ॻाल्हि ॿोल कई न एडवर्टाइज़मेंट लाइ बि,
1: बिल्कुलु।
0: बाबर भाई सां रब्तो थियो? बाबर भाई सां
1: जी वाह,
0: बाबर शेख साहब सां रब्तो थियो? स्टेशन डायरेक्टर आहिनि। नही प्रोग्राम्स लाइ कंदा उन्हनि जो, मां तव्हांखे पर्सनल नंबर सेंड कंदुमि बाद में। अवां नंबर अची वियो असां वटि, उन सेंड कंदुमि, उन ते ॻाल्हि ॿोल करे वठिजो एडवर्टाइज़मेंट जे हवाले सां, उहो तव्हांखे डील कंदा। ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ,
1: महिरबानी
0: भाउ, महिरबानी जी। साईं
1: वज़ीर अली शाह साहब जो हिकिड़ो कलाम ॿुधणो हुयो, तूं मूंखे वणंदो इहा ॻाल्हि बि
0: आहे, असां शामिल कयूं था साईं, असां बि परस्तार आहियूं। ज़बरदस्त, जी दोस्तों, त पोइ अव्हां जी फरमाइशन जो मान रखंदे असां हीउ गीत, जंहिं दोस्त मुमताज़ मोलाई जे महबूब अली शर साहब फरमाइश कई उनखे, ऐं हीउ जुमिला कुझु अहिड़ा आहिनि त पोइ असां पंहिंजी जेको आहे न हुसैन बख्सियाल ऐं उनजी सॼी नवाबी संगत खे ऐं ॿियो सॼे पूरे जेको आहे त मेहरापुर ऐं GFM 94 जे ॿुधंदड़नि सभिनी ऐं मिल्क ब्यूटी राइस जे शो ॿुधंदड़नि जे सभिनी महबूबनि जे नाम मुमताज़ मोलाई जो हीउ गीत

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो मुमताज़ मोलाई जी आवाज़ में शौक नवाबी संगत ऐं गुलाबी संगत ऐं महबूब अली शर जे नाम ऐं उनखां अलावा जी एफ एम 94 जे तमामु ॿुधंदड़नि पिरी प्यारनि जे नाम इहो ट्रैक। दोस्तो, प्रोग्राम में हिकिड़ी ॿी कॉल शामिल कंदासीं। हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? हैलो, हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम अस्सलाम सर, मंजूर फलोपुर लॻो ॻाल्हायां, खेरपुर खां नवाबी संगत मां।
0: मंजूर साईं, वेलकम वेलकम भलीकार नवाबी संगत खां।
1: ॾाढी महिरबानी सर, कहिड़ा हाल अथव सर?
0: दुआऊं दुआऊं अलाह एहसान, मां ॿुधायो। अव्हांजे बिना कॉल करण जे नवाबी संगत जे नाम असां ट्रैक डेडिकेट कयोसीं मुमताज़ मोलाई जो शौक। अव्हांजे बिना कॉल करण जे असां अव्हांजी सॼी संगत जे नाम ट्रैक डेडिकेट कयोसीं नवाबी। प्रोग्राम कोन पिया ॿुधो छा? सही सही सही, छा चवणु चाहींदो साईं?
1: हा, जे आवाज़ में खरी वयुमि त सुणा दोह तोते थई, जे साल खन में मरी वयुमि त सुणा दोह तोते थई। जल पंहिंजे यादनि खे मुदा न अचनि, जे तुंहिंजे यादनि में ठरी वयुमि त सुणा दोह
0: तोते थई।
1: अॻे त जीअ में जाइ उॾींदो है फल पोटे खे प्यारा, तुंहिंजे यादनि में मरी वयुमि त सोणा दोह तोते थई। पयो आहियां कोमा जे ख़्यालनि में, जे ॿीहर कोमा में हलियो वयुमि त सोणा दोह तोते थई।
0: असां भारत कयूं था ईअं, तव्हांखे कोमा में वञणु कोन ॾींदासीं। वॾी महिरबानी सर, वॾी महिरबानी। दोस्तनि जा नाम शामिल कयो।
1: हा, हुसैन भाई ख़्याल ॿुधे वधो
0: जी कयां जी। दोस्तों, मिल्क राइस जी खूबसूरत प्रोडक्ट्स, जबरदस्त तमामु बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल्क राइस जो दावा आहे त टिनि ॾींहनि में अव्हांजे चेहरे ते वाज़े नुमायां ग्लो अची वेंदो, ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिलि जीत ले। मिल्क राइस जूं ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, ऐं इहे सभई प्रोडक्ट्स मौजूदु आहिनि अव्हांजे पंहिंजे शहर जे तमामु वॾनि जनरल स्टोर ते, जंहिं मज़ा ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर ते। इन खां अलावा बि अव्हां अवेलेबिलिटी कराइणु चाहियो था जेकॾहिं पंहिंजे शहर जे पंहिंजे जनरल स्टोर ते, त पोइ उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करिणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ अव्हांखे जेको आहे मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां ॻाल्हि ॿोल करणी पवंदी ऐं प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी थी वेंदी। प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां? अवां रेडियो खे साइड कयो, सुणा अव्हांजी कॉल लॻी चुकी आहे। साईं रेडियो खे साइड कयो, रेडियो खे साइड कयो, नाहे साइड ते मुंहिंजो आवाज़ मूंखे ॿुधण में अचे पियो डबल। वालेकुम सलाम प्यारा, एवन बिल्कुलु कुर्ब, किथां पिया ॻाल्हायो, केरु पिया ॻाल्हायो? गुलाम फारूक राजपर, साईं भलीकार भलीकार, दुआऊं दुआऊं दुआऊं दुआऊं, अवां ॿुधायो।
1: तपामो लगदा कृपा तो हम कलाका
0: छा चवण चाहिदो
1: आ प्रोग्राम में तमा मशवरा मशवरा दीवा
0: पक्क
1: हा पक्क में मोरा डुआ बदने प्रोग्राम है
0: मानु वधिक बदन दा पोचा दा वहां शहर में मानु मन सुनानी दा ना आवाज़ आवाज़ सुनानी दा पो चेहरे सा कोन सुनानी दा मा घूमदो बता मन त ई कोई कोन सुनानी दो ना नाम त खणो न दोस्तनि जा जेके ॿुधी रहिया आहिनि असांखे माशाल्लाह माशाल्लाह ॾाढी ख़ुशी थी लाजवाब साईं लाजवाब लाजवाब कुर्ब थैंक यू मोहबतूं सभिनी खे सलाम प्यार मुंहिंजे तरफ़ां थैंक यू साईं कुर्बा

0: जी दोस्तों, हिकड़ो कॉलर बियो शामिल कंदासीं, हुन खां पोइ वधंदासीं अव्हां जी फरमाइश ॾांहुं। अस्सलामु अलैकुम, केरु साईं किथां खां? साईं वालेकुम सलाम, केरु किथां खां? मोहम्मद इब्राहिम ख़ासि कहली। साईं वेलकम, भली कार, ख़ुश आमदीद, किथां पिया ॻाल्हायो? ठरी मीरवा खां। भली कार भाउ खे, भली कार। ॻोठ सहरी, बिल्कुलु यादि थी वियो आहे। इहो भरिसां अव्हांखे कोई यादि कराए पियो त ॻोठ बि ॿुधायो, ईअं न साईं? हिन दोस्त जो नाओ खणी छॾियो, ख़ुशि थिए इहो बि भाउ। संगत ओड़ो पाड़ो सभु बिल्कुलु, कुड़म कबीलो कुटुंब सॼो, बचड़ा ॿार सभु ख़ैर ख़ुशि। बेशक बेशक, प्रोग्राम जे शुरू में असां हिकिड़ो सवाल पुछियोसीं, ॾाढो सिंपल ऐं आसान, हिकु दोस्त जवाब ॾिनो, वरी ॿियनि खां कोन पुछा, कईसीं कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे उल्टो लिखण सां कंहिं पखीअ जो नाओ थी वेंदो? हा, उबतो लिखंदासीं त पोइ पखीअ जो नालो थी वेंदो। उहो कहिड़ो शहर आहे जंहिंखे उबतो लिखंदासीं त पोइ उहो हिकु पखीअ जो नालो थी वेंदो? जवाब नोट करे छॾियो, प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, हिकु दोस्त ॿिए खां बि पुछा कंदासीं, पोइ आख़िर में ॿुधाईंदासीं उहो कहिड़ो शहर थो थी सघे।
1: वालेकुम
0: सलाम, वॾी महिरबानी, लव यू, लख लाइक, कुर्ब साईं, थैंक यू।

जी दोस्तों, कॉल्स भी हलंदियूं रहंदियूं। अवां जी फरमाइश जी हुकुम जी तामील कंदे सैयद वज़ीर अली शाह जी ख़ूबसूरत प्यारी आवाज़ में गीत ॿुधंदासीं। तूं मूंखे वणी थो, इहा ॻाल्हि बि आहे ऐं तोखे वणां मां, ज़रूरी त नाहे।

0: हा तू मुखे वणी ऐं मां तोखे वणा, इहा ॻाल्हि ॿी आहे। ऐं तोखे वणा मां ज़रूरी त न आहे, बिल्कुलु ईअं ई आहे त आशिक़ु त मजबूर हूंदो आहे, जेकॾहिं असांखे को वणी वञे त वणी सघे थो, ऐं इहो ज़रूरी न आहे त असां बि हुनखे वणूं। सैयद वज़ीर शाह सिंध जो नाले वारो सूफ़ी फ़नकार आहे, ऐं उहो मोहबत जे गीत खे बि उन सुफ़ियाने मिज़ाज ऐं अंदाज़ सां ॻाईंदो आहे, त हुनजी क्या ई बात कजे। असां सां गॾु प्रोग्राम में कॉलर आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां सर? कहिड़ा हाल आहिनि? किथां पिया ॻाल्हायो? केरु? हुसैन भग साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुश आमदीद। मालिक जा एहसान, दुआऊं दुआऊं अवां ॿाहिरिनि जूं। अवां प्रोग्राम ॿुधी रहिया हूंदो यकीन शुरू खां वठी, या अचानक ओच ते विच में शामिल थिया हो? हलो हलो जी जी साईं हुसैन बख़्श, अवां जो कॉल आवाज़ ड्रॉप पियो थिए। जी जी अचे थो, पर कुझु कटिजे पियो। मां जो प्रोग्राम प्रोग्राम अवां हींअर ट्यून कयो आहे या ॿुधो पिया शुरू खां?
1: न न बिल्कुलु, मूंखे 15-16 मिंट थी विया आहिनि, मां प्रोग्राम ॿुधां पियो।
0: जी जी हलो हलो साईं, मुंहिंजा अवांजो आवाज़ ड्रॉप पियो थिए। कॉलर बि प्यारा आहियो, आवाज़ बि प्यारी आहे, पर बिल्कुलु बि ग़ाइब थी आहियो। सो छा था चई सघूं, ॿी कॉल शामिल कंदासीं, मजबूरी आहे।

0: कॉलर केर बि हुजे जे रहण जी असां ॻाल्हि ॿोल न करे सघंदा आहियूं, उन सां ॻाल्हि ॿोल न थी सघंदी आहे, असांखे इंतिहा ई दुख थींदो आहे। सो बि अहिड़े प्यारे कॉलर खे कॉल शामिल कयूं था, ॾिसूं था हाणे केरु आहे असां सां गॾु। अगेन कॉल ड्रॉप थी वई, सो वरी बि कॉल शामिल करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां जी? शिराज अली, कहिड़ा हालनि बबला? वालेकुम सलाम। शिराज, अवां जी आवाज़ मां महसूस थिए थो अवां नंढी उमिरि आहे, अवां जी ॿार आहियो। क्या बात आहे चाचा, इहो काए में पढ़ंदा हो? अठी में पढ़ंदा हो, ऐं प्रोग्राम अवां ॿुधो पिया?
1: हलो,
0: जी जी, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: जी साईं, जी ॿुधूं
0: पिया। प्रोग्राम ॿुधो पिया, अकेला या बाबा वरनि सां गॾु वेही?
1: जी साईं,
0: बाबा वरनि सां गॾु वेही ॿुधो पिया, अकेला ॿुधो पिया?
1: आवाज़ नथो अचे सही।
0: आवाज़ त अचे थो बाबा। छा चवणु चाहींदो? छा चवणु चाहींदो? बिल्कुलु आवाज़ अचे थो, रेडियो खे छॾे करे अवां फ़क़ति जेको जी छा कंदो? कहिड़ो कलाम ॿुधंदो? आवाज़ अवां जो जी

0: जी माजर खाऊं, कॉल ड्रॉप थी भाई। सो प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो से गड आऊं है आप चौहान अहमा बुधी रहा और जी एफएम 94 मैरापुर प्रोडक्ट असा जी जगह जगह दोस्त इस्तेमाल कन पे वे पा ही पैं उन फीडबैक के हवाले से असन भी पाया उम्मीद क्यों था फर्दर जो अवं जिन दोस्त इन महल तीन प्रोडक्ट इस्तेमाल न कई कंपनी की दावा है त टिन दिन में असो चेहरे से ग्लो आनी दी खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले मतलब भरोसो एक भेरों कर ही दिसजे छा कंपनी एतरो चई रही है तो भरोसो करण घुर्जे भरोसो कर इस्तेमाल फीडबैक दिजे किथा मिली कि मिली सारी खबर अवं के पर वरी भी असा बुधाईंदा हलूँ अवं के पैं शहर मैरापुर के हर वे जनरल स्टोर से मिल्क राइस की प्रोडक्ट मौजूद है। मिल्क राइस की प्रोडक्ट में शामिल है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम मौजूद है जिन जनरल स्टोर से उन्हें मजा खुशी जनरल स्टोर मेहरापुर, फैजान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर। इन अलावा जैसे अवं अना कें बे जनरल स्टोर से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराने चाहो था तो उन अवं के हेल्पलाइन नंबर से कॉल करनी पौंदी। असो हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-510-9 इन कॉल करें अवं के गल करनी पौंदी मलिक जफर इकबाल या एम सिद्दीक साहब सा बिन्न मजा कें एक भी महबूब से गाल कौ तो वो तुम मसलो हल कर छा तेजे शहर उन जनरल स्टोर से प्रोडक्ट अवेलेबल थी वेंदी। एकड़ी कॉल शामिल कंदासी। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: अगर हुसैन बख्श अलवार संगत खां।
0: साईं साईं साईं भली कर मुखे डाडी खुशी थी बीहर अवां जी कॉल कनेक्ट थी वई।
1: साईं अल्लाह के करे आई त तवा साईं असो ने वडा एहसान के आ जो को ता मनता मले कलाम
0: आ मां त उही जिक्र के उही जिक्र पे क्या त ता प्रोग्राम जे करे शुरू खां बुधो पया त छाकाणि त मुमताज़ मौलाई जे गीत जी महबूब अली शर साहब जेको आहे त छरीअ खां फरमाइश कई त पोइ मुमताज़ जो गीत साम्हूं आयो नवाबी त पोइ असांजा शौक़ु नवाबी मूंखे अव्हांजी नवाबी संगत यादि अची वई मथां वरी साले पट खां हिकिड़ी गुलाबी संगत आहे उन्हनि बि कॉल कई मां जो वाह वाह गुलाबी नवाबी ऐं महबूब अली शर ऐं सॼी जी एफ एम जे नाम कईसीं 94 जे मैरापुर जे ॿुधंदड़नि जे ऐं मिल्क राइस ब्यूटी शो ॿुधंदड़नि जे मज़ो अची वियो असांखे बि ख़ुशी थी
1: अच्छा
0: इस्तेमाल करे पियो
1: जो रिजल्ट मिलियो आहे आगाही ॾियूं जेतिरी अवां ॻाल्हि कई आहे सो 100% बहितर
0: आहे
1: बिल्कुलु रिज़ल्ट बहितर आहे रिज़ल्ट बहितर
0: आहे वाह वाह त पोइ बाक़ी जेका संगत रहियल आहे नवाबी संगत उहा कॾहिं थी वठण वञे
1: इनशा पहिरीं तारीख़ ईअं सम्झो त असांजे आउं ईंदुसि असलम चना ईंदो ऐं ॿ ईंदासीं असां इनशाला ईअं सम्झो गज़ल खां वठंदासीं दोस्तनि जे लाइ गज़ल
0: मोकिलींदो आहे तस्वीर हू चए थो त इहा ॾिसो इस्तेमाल यूज़र्स अवां प्रोडक्ट साईं जन जी कंपनी जा आहियो मिल्क राइस जा पर मोहबत ई हुन साईं फील करे थो त मोहबत मूं सां बि अथव त पोइ हिन करे मुंहिंजी तस्वीर लाज़मी उमाणींदो आहे साईं फोटू भी कढाईंदासीं चांहि भी पीअंदासीं कचहरी भी
1: कंदासीं
0: इंशाल्लाह
1: नवाबी संगत सां गॾु हूंदा
0: लास्ट कॉलर हो तो का फरमाइश भी कर जो भी ट्रैक प्ले डेडिकेट सभी के संगत के दोस्तों के
1: असांजे कलाम तुंहिंजे ॻोठ जा सभु सावाड़े सॼण ऐं सिंगर साॻियो ई आहे मंताज मोलाई जी स्पेशली महिरबानी थी वञे त
0: ठीकु आहे इहो आख़िरी ट्रैक कंदासीं प्रोग्राम ॿुधायो दोस्तनि जा नाम शामिल कयो
1: हा बिल्कुलु साईं असलम चन्ना वारो प्रोग्राम ॿुधे थो ऐं साईं सिकंदर शाह प्रोग्राम ॿुधे तव्हांजो
0: ऐं
1: मुनीर रमन सियाल ऐं मैडम सुंदर तव्हांजे चाह सां प्रोग्राम ॿुधे थी अॼु अॼु छजर प्रोग्राम ॿुधे थी
0: माशाल्लाह
1: दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे सलाम
0: सभिनी खे मैडम खे सुंदस खे अदी शबीना खे ऐं अव्हां जी सॼी संगत खे मुंहिंजे तरफ़ां बि वालेकुम सलाम ऐं सलाम कुर्ब लव यू लख लाइक थैंक यू मोहबतूं कुर्ब अल्लाह हाफ़िज़ जी दोस्तों वरी मोहब्बतूं आवाजू मान प्यार चाह मूसा गड प्रोडक्ट बे इस्तेमाल कियो पियो असांजो पर्पस बि इहो ई आहे त प्रोडक्ट खां अव्हां खे अवेयर कजे एजुकेट कजे ऐं प्रोडक्ट जो सुठो रिस्पॉन्स मिली रहियो आहे मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब खे लख मुबारकूं त उन्हनि जी प्रोडक्ट रिज़ल्ट माण्हू पसंदि करे रहिया आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु प्रोडक्ट आहे उहे तमामु ज़बरदस्त सुठनि जनरल स्टोर्स ते ऑलरेडी जेको आहे अवेलेबल आहे ऐं जेके दोस्त ॿिया ॿाहिरियां या ॿिए कंहिं इलाइक़े खां तर खां कॉल कनि पिया उहे बि जेकॾहिं अवेलेबल करणु चाहिनि था प्रोडक्ट पंहिंजे शहर में पंहिंजे तर में त पोइ उहे असांजी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कंदा असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-510-9 नंबर ॿीहर थो रिपीट कयां 0300-310-510-9 इन ते कॉल करे अवां बेहद प्यारे ऐं महबूब दोस्त असांजे दिलबर माण्हू मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं सरदार एम सिद्दीक़ साहब सां ॻाल्हि ॿोल करे अव्हां जेको आहे त प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कराए सघूं था ऐं ऑलरेडी जिन जनरल स्टोर्स ते अव्हां जे पंहिंजे शहर में भर पासे में मौजूदु आहे असांजी प्रोडक्ट उन्हनि मज़ा ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर ते मिल्क राइस ब्यूटी जूं जेके प्रोडक्ट्स आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम इहे अव्हां प्रोडक्ट्स पाण बि वठो ऐं दोस्तनि खे बि रिकमेंड कयो सुठो रिज़ल्ट ऐं रिस्पॉन्स मिली रहियो आहे उहे दोस्त आहिनि इहे जेके इस्तेमालु करे रहिया आहिनि कंहिंजो बि दिलि रखण लाइ को हरू भरू को अहिड़ो कमेंट कोन करे रहिया आहिनि छाकाणि त जॾहिं हुननि इहा प्रोडक्ट कोन वरिती तॾहिं बि उन्हनि वाज़े ओपनली पंहिंजो रिव्यू ॾिनो त साईं असां वरिती न आहे असां ग़लति बयानी कोन कंदासीं तारीफ़ वरी कहिड़ी जेसीं ताईं वठूं न जेसीं ताईं इस्तेमालु न कयूं या फीडबैक वरी कहिड़ो सो बिल्कुलु मैच्योर दोस्त आहिनि जेके हिन प्रोग्राम खे ॿुधी रहिया आहिनि अॼु हिकिड़े नंढड़े जी बि फ़ोन आई ॾाढी ख़ुशी थी त प्रोग्राम जी मक़बूलियत में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे त असांजी अदियुनि जो भेनरनि जी कॉल बि अची रही आहे ऐं दोस्तनि जी कॉल बि अची रही आहे हर मकतबे फ़िक्र जे ऐं बल्कि सिंध जेको आहे त पंहिंजे वतन सां प्यारु करण वारनि सभिनी महबूब दोस्तनि ऐं अदब सां चाह रखण वारनि दोस्तनि जूं कॉल्स अची रहियूं मां बेहद थोरायतुमि मां अव्हांजो मानायतो आहियां सभिनी महबूबनि जो प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुलु शॉर्ट बचियो आहे आख़िरी फ़रमाइश जी हुकुम जी तामील असां कंदासीं अव्हांजी त मुमताज़ मौलाईअ जी आवाज़ में अव्हां खे गीत ॿुधाईंदासीं तुंहिंजे ॻोठ जा वण सावा त पोइ सदाई सभिनी जे ॻोठनि जा बल्कि सॼी सिंध जे ॻोठनि जा जीअं शाह लतीफ़ सरकार मुर्शिद फ़रमायो त साईं मुसदाईं करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा वरी मिलंदासीं ॿिए प्रोग्राम सां सिंध सलामत साध सलामत अलह निगेबान
2: गाना तव्हांखे मिलनि था उहे हिट था थी वञनि सुपर डुपर हिट था थी वञनि कहिड़ो राज़ आहे
3: छो त असगर शायर तमामु सुठो आहे ऐं इंसान बि सुठो आहे हुन जा गीत शुरू खां वठी मूंसां नंढा माण्हू मूंसां

0: ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल वकाई चाहिए है ता कतरी चाकड़ी जरिए अमरीकी वफद से रबत थो ईरान पैंजो मौकिफ ए शर्त अमरीका ताई पहुंचाया। ईरानी शर्तन में सभी माजन से जंग सामूंडी नाकाबंदी इकतसादी जंग जो खात्मो ए मुंजमद ईरानी असासन की बहाली शामिल हैं। अमरीका के ईरानी वफद लाए खास हिफाजती कदम की का भी दरख्वास्त ना कई वही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर दौरान ईरानी वफद गडल कौमन के इजलास में वॉकआउट कयो।
1: जदे मैशत तरक्की कंदी आहे तही धरना आ एहतजाज शुरू करे छरींदा आहिन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद ते चढ़ाई तबाही ए बर्बादी जी से सुदसमा वफाकी वजीर अताताड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अताताड़ चयो तो कुहाट ए हंगू में सूरत हाल खराब आहे ए केपी हुकूमत जा जिम्मेवार वरी टिकटॉक ठाहिण में रुधल आहिन। वफाक खां पैसा न मिलण जो तासुर भी गलत आहे। केपी हुकूमत 13 सालनि में को भी कम नाहे कयो ए सूबे खे तबाही कंदीअ ते पहुचाए छॾियो आहे।
0: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चाहूं था मार्च भी थे इो पुरमन भी हुए एक हुकूमती जत्थो प्रोपेगेंडा कर रो है हुकूमत इदार हमलों कर वही रहा जो टोलो बयान टा रो है उनको बंदोबस्त करणो पवन। इस्लामाबाद में मीडिया से गलंदे बैरिस्टर गोहर असा खबर है कैसा गाल करनी है मसलन जो सियासी हल घुरण पवन कुछ मू सियासी मसलन जो सियासी हल ना चाहन।
1: पीटीआई जी 27 सितंबर वे इम्कानी मार्च के मुंह डेण जो तैयारी जारी। पंजाब हुकूमत समूरी सूबे में कलम 144 लागू कर छो रेंजर्स जो भी खिदमतू तलब। पंजाब की घरू वजारत मूजिब रावलपिंडी अटक जहलम ए मियांवाली में रेंजर्स मुकर थी। पंजाब हुकूमत पारा 27 सितंबर से मुख्तलिफ इलाक में मोबाइल फोन ए इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल करने की दरख्वास्त। लाहौर का इस्लामाबाद मोटरवे जरिए माल बरदार गाड़ियों की इस्लामाबाद में दाखिला से भी पाबंदी लागू। पिशावर मोटरवे अगवाट बंद कर वो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
4: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569।
6: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
7: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: उम्मीद के दिए जलते हैं।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865-453।

इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। जख़्म जे मिलन पया त भले पया मिलन समें, जख़्म जे मिलन पया त भले पया मिलन समें, सूंह बेकरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। तुंहिंजो चहिरो अखियुनि खे अर्पे वियो आ मायना का, तुंहिंजो चहिरो अखियुनि खे अर्पे वियो आ मायना का, तुंहिंजे महकार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियो। तूं अची अची अची न अची जानम, तूं अची अची अची न अची जानम, तुंहिंजे इंतज़ार मां बाहूं कढूं त काफ़िर। तूं अची अची अची न अची जानम, तुंहिंजे इंतज़ार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। सच ऐं ख़ुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे, सच ऐं ख़ुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे, इन ई ऐतबार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं। इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं, चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं।

मैं कर रहा हूं इकट्ठे दुनिया के तमाम रंग, मैं कर रहा हूं इकट्ठे दुनिया के तमाम रंग, उसकी आंखों का सदका उतारना है मुझे। वो लाख गुस्से में बोले उठ के जाता नहीं, वो लाख गुस्से में बोले मैं उठ के जाता नहीं, मुझे पता है फिर उसने पुकारना है मुझे।

मुझे पानी में उतरने का इशारा करके, मुझे पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। मुझे पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। और तजर्बा एक ही काफी है इबरत के लिए, तजर्बा एक ही काफी है इबरत के लिए, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके।

हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। हिजरत के अलावा, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल मीठे नहीं थे हमको मयसर, दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था, उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको, हालांकि मुझे जान से मारा भी नहीं था।

बातों बातों में, बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे। बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे, जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे।

जी दोस्तों वक्त थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं, अवां जो फ़ोन कॉल्स बि अटेंड कंदासीं, अवां सां थोरी सारियूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं, दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, कचहरी कंदासीं, त पोइ वापसि विहंदासीं हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क।

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश ख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: जा पीउ रेडीअ ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया, भला इहो त ॿुध ऐं वठी अचु।
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार, वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
3: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्ने क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69। खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03000-3385-69।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरबाज GAFM 94।

तू जर्द लुड़क छाणी मां सर्द रात बन जा। तू जर्द लुड़क छाणी मां सर्द रात बन जा। वेठा रड़ू रोजानू उन खां अगे मिलू। बद जोक नैण बीठा गुलगुल ते रोज उलरन। बद जोक नैण बीठा गुलगुल ते रोज उलरन। खुशबू थिए निशानों उन खां अगे मिलू। बस प्यार आहे पहजो सब कुछ गुलाब जाना। बस प्यार आहे पहजो सब कुछ गुलाब जाना। लुटजे यो खजानो उन खां अगे मिलूं। कोई ठहे फसानो उन खां अगे मिलूं। टोड़े छड़े जमानो उन खां अगे मिलूं। वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सा गदा हूं आया अब चौहान अवां बुधी रहा हो GAFM नेटवर्क। जी दोस्तों वक्त है अवां जो फोन कॉल्स अटेंड करण जो। ऐसा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा। हेलो

0: हेलो, मुझे आवाज अच्छे पाई अहां जो बिल्कुल भी कोन पे जे। हेलो
1: हेलो
0: जी जी जी जी साईं वरी मेहरबानी अहां के तकलीफ आई उन लाइ माज़रत खां आयूं। वेलकम वरी का तां
1: जे प्रोग्राम फॉल्ट पे जी
0: हुई। जी जी थी सके तो वेलकम भली कार प्यारा प्रोग्राम में केर के था खां मुबारकपुर खां केर
1: सोना
0: खान साईं मुझा वेलकम भली कार कड़ाल खुश आयो
1: खैर सर खैर तां जो शो सर
0: लख लायक मोहब्बत हूं अवां जो कुर्ब थोरा छा चवण चाहिंदो को
1: हां सर खैर
0: बिस्मिल्लाह इरशाद
1: साल साईं जो
0: जी क्या
1: ने
0: जी साईं
1: क्या पानी है मुकई
0: जी जी बिल्कुल जो आवाज काफी कटजे पो सो जिन दोस्तों तीन पहुतो जड़ो हाल अभी मां तेड़ो पेश पे रहा नेटवर्क जो यो इशू आ यो असा जो इशू ना है हां थोड़ी देर अग में जो को इशू हो कॉल कनेक्ट न पई थे वो थी सके तो असा टेक्निकल हो कॉल कनेक्ट थन खा पो अमा जे मोबाइल नेटवर्क जो इशू थी सके तो बड़ी मेहरबानी प्यारा प्रोग्राम में कॉल करण लाए को दोस्तन जा नाम शामिल करण चाहि तो
1: हां सर दोस्त सर सर मुबारक
0: जी
1: होटल दे
0: जी
1: जान के ता वाइफ पर
0: बिल्कुल मुझे तरफा अवां जी सजी संगत के जें जें दोस्तन जा वा नाम शामिल किया उन के अस्सलाम
1: चारपुर गाय सलाम है रजब
0: जी
1: सलाम जानी के बोर्ड नाम करण के बाद में चाहे उनके बोर्ड
0: कुर्ब कुर्ब
1: सदन में पर को
0: काम है जी केड़ो कलाम
1: सनम मारे जी
0: सनम मारवी जो कलाम प्ले लिस्ट में शामिल किया था वरी मेहरबानी प्यारा प्रोग्राम बुद्धा रहो थैंक यू कुर्ब जी दोस्तों बिना कहे ताखीर जे एकड़ी बी कॉल असा प्रोग्राम में शामिल कंदा से अस्सलाम वालेकुम केयर साईं के थागा
2: सर वालेकुम सलाम बरकत अली खवार को करें
0: बरकत अली खवार
2: कोच
0: मोहम्मद खान खवारो
2: खवार
0: जी जी जी नौ शेरो खान वेलकम भली कार खुश आमदीद प्यारा प्रोग्राम में प्रोग्राम के पे लगे
2: प्रोग्राम से तेरा का पास प्यारा बोला जे नंबर का आ लगे को ग्रा
0: असल में नंबर दुखियो कोने रश आ है
2: आवा
0: जणन प्यारन जी भाईरन जी ये त थोरान बूते ए दोस्त जे के कॉल कन पे उनन के त जाहिरा रश त हुंदी न पो शामिल थियो हो राणे मुमल जो किसो जी जी शामिल थियो दोस्त अवां के प्रोग्राम बुधारो उन ॻाल्हि जी गवाही ॾींदा खोड़ सारा दोस्त ब्रेक ते वेंदासीं दोस्तनि जा नाम शामिल कयो जी दोस्तो वापसि वरंदासीं हिकु नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क

माज़रत कयूं कॉल अवां जी शामिल कोन करे सघिया से कॉल डिस्कनेक्ट थी वई इहे दोस्तन जो प्यार आहे मोहब्बत आहे मान आहे जो अवां असां सां जुड़ियल आहियूं ऐं अवां मूंसां जुड़ियल आहियो जेके दोस्त सभई जेके आहिनि त प्रोग्राम में शामिल थियणु चाहिनि था उहे असांजे लाइव कॉलिंग नंबर ते कॉल कंदा इनशाला कॉल कनेक्ट थींदी हींअर थोरो घणो इहो टेक्निकली फॉल्ट थींदो रहंदो आहे सो असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000 1134 88

जैसे ताई अवां जी कॉल कनेक्ट थे तैसे ताई ब्रेक ते वणण खां अग में अवां जी कड़ी फरमाइश हुकुम जी तामील कंदे सनम बारवी जी खूबसूरत आवाज में गीत बुधूं अचो तकर जी इन म्यूजिक मां इंजॉय थियूं।

जी दोस्तों, वक्त थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो। न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वापसि वरी वेंदासीं, अवां जूं फ़ोन कॉल्स बि अटेंड कंदासीं, त पोइ ॿुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क।

0: मोरू,
1: नौशहरो,
0: मीरपुर खास,
1: लाड़काना,
0: सक्खर,
1: गूंज रही है हर जगह पर
0: सिंध की आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क।